हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि तदनुसार 14 जून 2026 सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200

0: तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में प्रभु श्रीनाथ जी को हवेली संगीत के इस कीर्तन के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कलाकार हैं गोपाल ठाकुर।

सच्चे मन से भक्ति करने से हर विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख शांति के साथ सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाता है। प्रभु के चरणों में शरण लेकर हम जीवन में नए आरंभ और समृद्धि का अनुभव करते हैं। कार्यक्रम की अगली रचना महेंद्र कपूर के स्वर में।

कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। अगली रचना अनूप चलोटा के स्वर में है।

समर्पण ही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। जो व्यक्ति अपने समर्पण से कार्य करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जगजीत सिंह की गाई हुई कार्यक्रम की ये अगली भक्ति रचना।

जहाँ प्रथम वंदन गणपति का होता है वहाँ हर कार्य सिद्ध होता है। आइए विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और सफलता के आधार भगवान गणपति की स्तुति करें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने हमारी तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए सुने कार्यक्रम विवरण।

श्री रामचरितमानस गान आप सुन पाएंगे सुबह 6:40 पर। खेती में आज ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 6:50 पर।

सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7 बजे। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 7:45 पर, सुबह 9:30 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर।

8:30 पर। पुरानी फिल्मों से फिल्मी तराने आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे। राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

बच्चों का कार्यक्रम बगिया के फूल आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे दिन में 12:30 पर, दोपहर 1:45 पर और रात्रि 8:30 पर।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात, साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत। रविवासरीय संगीत सभा, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे।

अभी आप सुन रहे थे हमारे दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए सुने श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

अयोध्या नगरी के बाहर जनकपुर प्रस्थान के लिए बारात सजी खड़ी है। वातावरण में स्त्रियों के कंठ से फूटते मंगल गीत के स्वर गूंज रहे हैं। मंत्री सुमंत्र दो रथ विशेष रूप से सजाकर राजा दशरथ के समीप ले आए। नरेश ने एक रथ पर आग्रहपूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को बैठाया तथा शिव गुरु गौरी तथा गणेश का स्मरण कर स्वयं दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए। गुरु की आज्ञा पाकर महाराज ने जब बारात को चलने का संकेत दिया तो देवगण मंगल पुष्पों की वर्षा करने लगे। समस्त वातावरण गाजे बाजे, घोड़े हाथियों के गर्जन तथा धरती और आकाश से झड़ते मंगल स्वरों की गूंज से झंकृत हो उठा। बारात ऐसी सजी है जिसका वर्णन करना कठिन है। चहुं ओर शुभ शकुन हो रहे हैं, बाएं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं, तो दाहिनी ओर खेतों में कौवों का समूह

मंगल का संकेत दे रहा है। लोगों को नेवले तथा लोमड़ी के भी दर्शन हुए, जो शुभ शकुन के लक्षण हैं। उधर उज्जवल धवल सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण का संकेत दे रही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, आइए सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने नानू भैरो घणो घणो राम राम सा। जून रा आणी महीना में किसान भाई खरीफ फसला री वावणी री तैयारियां शुरू करे है। जटे खरीफ मक्का री अगर आप बात करा तो अण में देरू पाकवा वाली किस्म जो है वंडी वावणी किसान भाई अणी टेम कर सके है। वणु पहला किसान भाई ने खेत में पलेवो कर लेनो चावे। जणु वर्का प्रारंभ वेते ही पहला ही खेत में भली भांति जो है ई मक्का ने स्थापित कर सके और वावणी रे 15 दिन रे बाद एक निराई भी वही जावे। शीघ्र पाकवा वाली मक्का री वावणी जो है अणी टेम किसान भाई बहना ने कर लेनी चावे। खरीफ रा मौसम में मक्का रे वाते खेत री तैयारी रे वाते भूमि में हेरों एक गहरी जुताई और 2-3 जुताई कल्टीवेटर कर देनी चावे। जुताई रे बाद पाटो लगाई ने खेत ने समतल कर लेनो चावे जणु की नमी सुरक्षित रहे। मक्का री खेती रे वाते दोमट मिट्टी लेने बलुई दोमट गहरी भारी गठन वाली मिट्टी जो है जणमें एक ही कार्बनिक पदार्थ री मात्रा उचित और जल निकास री पूरी सुविधा वे वह भूमि मक्का री फसल रे वाते हऊ मानी जावे। लवणी और क्षारीय मिट्टी जो है मक्का री खेती रे वाते हऊ नी रहे है। खरीफ मक्का री खेती रे वाते परिपक्वता अवधि रे आधार पर अधिक उपज दे वाले बहुत सारी संकर प्रजातियां उपलब्ध है। मक्का री जल्दी पाकवा वाले संकर प्रजातियां जिस तरह की PEHM2, PEHM3, PEHM5, विवेक संकर मक्का 4 ये प्रजाति

85 95 धन में पाक जावे और अना प्रजातियां ने सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्र में उगायो जा सके है। मक्का री पूर्णकालिक परिपक्वता प्रजातियां री अगर आप बात करा तो उनमें पूसा जवाहर शंकर मक्का एक, गुजरात आनंद व्हाइट मक्का हाइब्रिड दो MM 9344, पूसा HM 9, इम्प्रूव्ड प्रताप मक्का 9, प्रताप कंचन 2, WC 236 ई प्रमुख किस्म है। अणि वर्गरी प्रजाति में 100 लेने 110 दिन में जो फसल है वह पाके है और प्रोटीन युक्त मक्का री जटे प्रजातियां री बात करा तो उनमें HQPM 1, HQPM 4, HQPM 5, HQPM 7, विवेक QPM 9, शक्तिमान 1, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 ई प्रमुख किस्म है। अणा प्रजातियां ने किसान भाई वना क्षेत्र में बोई सके जटे सिंचाई देने समय पे वावणी वे और फसल काल में वर्षा जो है वह सुनिश्चित वही जावे है। जो किसान भाई मक्का री किस्म में बेबी कॉर्न रे बात है अगर खेती करना चाहे तो बेबी कॉर्न ले पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 3, HM 4A, BL 42, जी 5414 ये प्रमुख किस्म है। और पॉपकॉर्न रवाते पर्ल पॉपकॉर्न एवं अंबर पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न रवाते प्रिया और माधुरी जो है वे उन्नत किस्म है। खरीफ मक्का में उचित संख्या 65,000 लेने 78,000 पौधा प्रति हेक्टर प्राप्त करवा रवाते 20-25 किलोग्राम बीज जो है वो प्रति हेक्टर ही आवश्यकता वे है। बीज उत्पादन रवाते पंक्तियों पंक्तियों और पौधरे बच्चे दूरी 60 लेने 75 और 12 लेने 15 सेंटीमीटर किसान भाई राख सके और बीज जो है वो 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर वावणी करनी चाहे। संकर बीज उत्पादन में संकर प्रजातियां में नर एवं मादारा बीज क्रमशः 2 और 4 पंक्तियां में बोया जावे। सामान्य स्थिति में वावणी हल रे पाछे कुड़ारी 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी है और पंक्तियों पंक्ति री दूरी अगेती किस्मा रहवाते 45 सेंटीमीटर और मध्यम और देरु पाक वाली प्रजातियां में 60 सेंटीमीटर राखनी चाहे। पौध पौध री दूरी अगेती किस्मा में 20 सेंटीमीटर और मध्यम और देरु पाक वाली प्रजातियां में 25 सेंटीमीटर ही राखनी चाहे। जटे खाद और उर्वरक री बात करा तो मक्का री भरपूर उपज लेवा वाते किसान भाई संतुलित उर्वरक रो प्रयोग, उर्वरक री मात्रा, मिट्टी रा उपजाऊपन और अन्य प्रबंधन कारका पे देखो निर्भर करे तो किसान भाई बहना ने चाहे कि सबसे पहला अपने मिट्टी रो परीक्षण करावे और वनडे आधार पर ही अपनी मिट्टी में जनी उर्वरक री जरूरत वे वणी मात्रा में वणी उर्वरक री पूर्ति करनी चाहे। मक्का रे बात देखा तो आमतौर पर 120-150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 ग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दरू देनो चाहे। नाइट्रोजन री 1/4 मात्रा तथा फास्फोरस और पोटाश री पूरी मात्रा वावणी रे पहला खेत में देनी चाहे। यदि मिट्टी में जीवांश पदार्थ री कमी वे तो वावणी लगभग 15-20 दिन पहला 6-8 टन प्रति हेक्टेयर दरू गोबरी खाद प्रयोग में करवाओ। किसान भाई बहना ने मक्का री फसल में 25% नाइट्रोजन री मात्रा कम कर सके है। शेष नाइट्रोजन 2 बार में बराबर मात्रा में टॉप ड्रेसिंग रे रूप में प्रयोग करनी चाहे। पहली टॉप ड्रेसिंग जब फसल घुटना तक री ऊंचाई बह जावे वनी टेम और दूसरी जड़ा निकलवारी टेम खेत में किसान भाई डाल सके। जड़ा क्षेत्र में पाछले साल ऐसा हैदान दिखाई दीदा वे वन में अंतिम जुताई री टेम 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर दरु मिट्टी में मिले बीज ने बोणो चावे। जटे मक्का री फसल में अगर सिंचाई री बात करा तो मक्का री पौध री प्रारंभिक अवस्था में सिल्किंग दाना पड़वारी अवस्था में पर्याप्त नमी री आवश्यकता वे। अड़ी टेम यदि वर्षा नहीं वे तो किसान भाई सिंचाई करनी चाहे। सिल्किंग रे समय पानी नहीं मिलवाओ कई की दाना कम बनेगा और वर्का रे केड़े खेत में जल निकासी रो अच्छो प्रबंधन मेणो चाहे नहीं तो पौधा जो है वे पीला पड़ जाएगा और माणारी बढ़वार जो है वह रुक सके है। जटे खरपतवार प्रबंधन री अगर आप बात करा तो मक्का री खेती में निरय गुड़ाई रो अधिक महत्व है। अंडे लारे लारे निरय गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण रे लारे जड़ा में ऑक्सीजन रो संचार वे अणु व दूर तक फैलने भोज्य पदार्थ ने एकत्र करने पौधा ने देवे। पहली निरय जमावो 15-20 दिन रे केड़े करनी चाहे और दूसरी निरय 35-40 दिन रे बाद किसान भाई बहन ने करनी चाहे। जटे खरपतवार नाशीरी अगर आप बात करा तो एट्राजिन 50% WC 1.5-2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणनशील चूर्ण या पचे एलाक्लोर 50 cc 4-5 लीटर 600-800 लीटर पानी में गोल वणई ने वावणी रे दूसरे या तीसरे दिन अंकुरणु पहला उपयोग करे तो खरपतवार नष्ट वही जावे और दूसरा खरपतवार नाश

जी एलाक्लोर अगर है तो 50 cc 4 और 5 लीटर मात्रा रिवावणी रे तुरंत बाद अंकुरण रे पूर्व 600 800 लीटर पानी में मिले ने प्रयोग करे। यह पचे टोपरामिजोन जो है 33.6% सक्रिय तत्व प्रति एकड़ या पचे टेम्बोट्रियोन 50 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ वावणी रे 20 और 30 दिन बाद 500 600 लीटर पानी में मिले ने छिड़काव करे। और यदि मक्का रे बाद आलू री खेती किसान भाई ने करनी है तो एट्रोजिन रो प्रयोग नहीं करे। तो अबार खरीफ फसला में खरीफ मक्का रे अगर वावणी में किसान भाई अणी बात रो ध्यान रखेगा तो वे अच्छी फसल प्राप्त कर सकेगा। और देखो घड़ी री आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवा रो अपनो टेम वेरो तो चाला सा आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब सुने सदाबहार नगमे। पहला नगमा फिल्म आपकी कसम से, आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महान। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली पेशकश आराधना फिल्म से, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

ये गीत था फिल्म सिलसिला से, आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम रंगीला।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने सुना अलबिला फिल्म से ये गीत। इसी के साथ ही सदाबहार नगमे बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने आबोहवा।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण

0: तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं रूप कुमार राठौड़ की गाई ये गजल।

मिताली सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने को हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, बस कुछ ही देर में।

0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं

0: नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा

0: ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days.

0: दो पल की जिंदगी के दो नियम, दो पल की जिंदगी के दो नियम, बिखरो फूलों की तरह, निखरो फूलों की तरह, बिखरो खुशबू की तरह। एक नई ताजगी के साथ शुरू करते हैं संडे मॉर्निंग में आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: अमित।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और विद्या, इसी के साथ हम बता दें कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम क्या खास लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए। तो कार्यक्रम के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि वीक रिकैप में हम बात करेंगे सप्ताह भर की कुछ खास खबरों के बारे में, और साथ ही बात करेंगे विश्व रक्तदाता दिवस की जानकारी भी हम साझा करेंगे। और अभी दो बेहतरीन वर्ल्ड कप चल रहे हैं, एक है फीफा, उस पर भी बात की जाएगी, और साथ में महिला T20 विश्व कप, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही

0: हिस्टोरिक फैक्ट की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में हम जानेंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और उन घाटों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ।
1: बिल्कुल सही कहा अमित, और उसके बाद जानकारी और मनोरंजन में आज हम बात करेंगे शहर में थीम बेस्ड कैफे की बढ़ती है लोकप्रियता पर। उसके बाद हम वॉइस ऑफ लिसनर्स में जानेंगे हमारे श्रोताओं के व्यूज आज के प्रोग्राम को लेकर। हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर और सप्ताह की खास खबरों पर डाले एक नजर। क्या कुछ खास रहा अमित इस सप्ताह में, बता दे हमारे श्रोताओं।
1: बिल्कुल,
0: मेवाड़ में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्री मानसून शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल अमित, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी बारिश हमारे उदयपुर में भी हो जाए
1: जी।
0: और अब सीधे व्हाट्सएप पर भी मिल सकेंगे प्रमाण पत्र। पहचान पोर्टल में जन्म मृत्यु पंजीयन हुआ आसान। राज्य सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रक्रिया को पूरे तरीके से डिजिटल और पब्लिक फ्रेंडली बना दिया है। पहचान पोर्टल और पहचान ऐप के जरिए ई साइन प्रमाण पत्र पूरी तरीके से मान्य दस्तावेज माना गया है, जिसका सत्यापन QR कोड से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में उदयपुर की झीलों के संरक्षण पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। उदयपुर की झीलों की बिगड़ती हुई स्थिति पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को झीलों में अतिक्रमण रोकने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण और जलाशयों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
0: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मेहमान नवाजी और लजीज पकवान की महक सात समंदर पार स्कॉटलैंड की वादियों में बिखरने जा रही है। राजस्थान की माटी से कोसों दूर स्कॉटलैंड की ऐतिहासिक राजधानी एडिनबर्ग में रविवार यानी आज दूसरा रॉयल्स डिनर होगा। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्स ने इसका बीड़ा उठाया है। यह संस्था युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और राजस्थानी कला और विरासत को सहेजने का काम कर रही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर हल्दी घाटी में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से कई आयोजन हुए। महाराणा प्रताप के साथ माँ पन्नाधाय और राणा पूंजा को भी किया नमन। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से 17 जून को होने वाले प्रमुख आयोजनों की तैयारी भी अब अंतिम चरण पर।
1: बिल्कुल विद्या, और इसी के साथ में क्रिकेट के जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए महिला T20 विश्व कप चल रहा है और 13 जून को

0: तो सही अमित, अब रुक करते हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले का। छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से फोएबे लिचफील्ड ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में जॉर्जिया वेयरहैम ने शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में नजर आई और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 13 जून को टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला भी खेला गया, जिसके साथ दिन भर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
1: बिल्कुल, ये थी कल खेले गए मैच की जानकारी। और आज जो मैच खेले जा रहे हैं उनके बारे में बता देते हैं। पहला मैच है बांग्लादेश महिला टीम और नीदरलैंड्स की महिला टीम के बीच में, ये मैच खेला जाएगा 3:00 PM। और दूसरा मैच है भारतीय महिला और पाकिस्तानी महिला टीम के बीच में। इसी मैच के साथ भारतीय क्रिकेट विश्व कप अभियान की शुरुआत होगी। ये मैच शाम 7:00 PM खेला जाएगा,
0: तो देखना ना भूले।
1: बिल्कुल।

0: तो 13 जून का दिन रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहा। सबसे पहले ग्रुप बी के मुकाबले में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। स्विट्जरलैंड ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में कतर ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया और विश्व कप इतिहास का अपना पहला अंक हासिल किया। इसके बाद सबकी नजरें ग्रुप सी के हाई वोल्टेज मुकाबले पर थी, जहां 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना मोरक्को से हुआ। मोरक्को ने पहले गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने बराबरी का गोल दागकर टीम को मैच में वापस ला दिया।
1: और इसी के बाद में तीसरा मुकाबला ग्रुप सी के एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने हेती को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में विजय की शुरुआत करी। स्कॉटलैंड की मजबूत रक्षा पंक्ति ने पूरे मैच में हेती को गोल करने का मौका ही नहीं दिया। और विद्या, अगर आज हम बात करें तो 14 जून है और 14 जून के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है।
0: मैं इशारा तुम्हारा अमित समझ गई हूँ। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। कहते हैं ना, रक्तदान महादान, ये लाइन हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर वास्तविकता में जाने आइए इसका क्या है महत्व। इस दिन को मनाने का मकसद एक चिकित्सीय कार्य नहीं, बल्कि यह एकजुटता, करुणा और सामूहिक जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा दिन है जिसकी वजह से कितने लोगों को नया जीवन मिलता है। एक रक्तदान जो आपात स्थितियों, प्रसव, शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार और कई गंभीर बीमारियों के आजीवन उपचार के दौरान रोगियों की सहायता करता है।
1: बिल्कुल, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई थी। 14 जून का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंड स्टाइनर का जन्म हुआ था और ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी खोज आज हमारे देश में जो विज्ञान है या स्वास्थ्य चिकित्सा की जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ रही है। साथ ही इस वर्ष की अगर थीम की हम बात करें तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, इसका आशय है रक्त दें आशा दें और

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और अमित अब हम बताएंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और उनकी जानकारी। हमारा मेवाड़ क्षेत्र जो अपने सुंदर झीलों, नदियों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक घाट है जो पर्यटन और आस्था के केंद्र है। आज हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हम जिक्र करेंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और देंगे आपको इनके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करें गणगौर घाट की, जो उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। ये लेक पिछुला के किनारे स्थित है और यहाँ गणगौर उत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और अमित, जब भी हम शाम को जाते हैं तो यहाँ से जो महलों के दृश्य होते हैं वो काफी मनमोहक देखने को मिलते हैं हमें। और अभी गर्मी का समय है भी तो आपको काफी तादाद में वहाँ मिल जाएंगे लोग। और अब बात करें दूसरे घाट की, तो अम्भराई घाट भी उसके समीप ही है। यहाँ से सिटी पैलेस और ताज लेक पैलेस का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। खूबसूरत सुबह के साथ यह घाट सनसेट के शानदार नज़ारों और फोटोग्राफी के लिए भी फेमस है।
1: जी, और हम मेवाड़ की घाट की बात कर रहे हैं तो राजसमंद का नौ चौकी घाट, हम इसके बारे में बात ना करें तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये घाट अपनी कलात्मक छतरियों के लिए, तोरण के लिए, सुंदर नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर राज प्रशस्ति शिलालेख भी उपलब्ध है। संगमरमर की 25 विशाल शिलाओं पर अंकित प्रशस्ति, जो कि मेवाड़ के इतिहास, संस्कृति और महाराणा राज सिंह के कार्यों का उल्लेख करती है। इसी के साथ में चित्तौड़ में जो हमारे पास में किले के अंदर 80 कुंड हैं और हर कुंड का एक घाट है, हर घाट का एक महत्व है, सबके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ बेहतरीन जो घाट हैं उसमें से एक है गोमुख कुंड का घाट। ये चट्टान पर बने हुए गोमुख से निरंतर जलधारा कुंड में गिरती रहती है और मान्यता है कि ये कुंड सदियों तक दुर्गवासियों के लिए जल का प्रमुख स्रोत रहा था। गंभीरी नदी की अगर हम बात करें तो उसके तट पर भी एक बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोग धार्मिक गतिविधियों के लिए और नियमित रूप से स्नान करने के लिए आते हैं।
0: बिल्कुल, नवलखा घाट जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर्यटक बोटिंग का आनंद भी लेते हैं। और बात करें लाल घाट की तो ये भी ऐतिहासिक महत्व वाला घाट है। पुराने उदयपुर शहर की स्थापत्य कला और पारंपरिक वातावरण को दर्शाता है। यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होते हैं। बात करें दूध तलाई झीलों की तो यहाँ आसपास बने छोटे छोटे घाट पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पहाड़ियों और झीलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मेवाड़ के घाटों का महत्व, ये घाट धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणगौर, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य त्योहारों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं।

0: और अमित, हम बता दें वॉइस ऑफ लिसनर्स में हमारे श्रोता आज के प्रोग्राम को लेकर हमारे जो हैं हमारा कैसा रहा प्रोग्राम उसके लिए व्यूज दे सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568। तो प्लीज जल्दी से मैसेज कीजिए।
1: नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 9462697568।

0: ये है प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो युवाओं से लेकर परिवारों तक सभी को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, जानकारी और मनोरंजन में हम बात करेंगे शहर में थीम बेस्ड कैफे की बढ़ती लोकप्रियता। आज के दौर में लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव भी चाहते हैं, इसी वजह से थीम बेस्ड कैफे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ वे खूबसूरत तस्वीरें ले सके और अपने दोस्तों के साथ यादगार पल बिता सके, और थीम बेस्ड कैफे इसी जरूरत को बखूबी पूरा करते हैं। आज आपको शहरों में बुक कैफे, नेचर कैफे, विंटेज कैफे, मूवी थीम कैफे, म्यूजिक कैफे, यहाँ तक कि राजस्थानी संस्कृति पर आधारित कैफे भी देखने को मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही विद्या आपने, और इन कैफे के बीच में जो हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है उसका महत्वपूर्ण कारण युवा हैं, क्योंकि युवाओं को कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। और अगर हम कैफ़ेज़ की बात करें तो कुछ कैफ़ेज़ हैं जो बोर्ड गेम कैफ़े, पेट कैफ़े, यानी अगर आपके घर पे पेट है, बिल्ली है, डॉग है, तो उनके लिए भी अब कैफ़े है, आप वहाँ पे अपने पेट को लेकर ईजीली जा सकते हैं। कुछ कैफ़ेज़ हैं जो आर्ट कैफ़े हैं, और कुछ कैफ़े बुक एक्सचेंज कैफ़े हैं, यानी आप जब भी वहाँ जाएंगे कुछ किताबें आपको एक्सचेंज करनी है। और सबसे खास बात, ये सारे ही कैफ़े किसी न किसी तरीके से हमारी संस्कृति को, हमारी हस्तशिल्प को, किताबों को, सांस्कृतिक विरासतों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटीरियर अगर इन कैफ़े का देखो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। कहीं पर ग्रामीण परिवेश आपको देखने को मिलेगा तो कहीं पे बिल्कुल मॉडर्न आपको इंटीरियर नज़र आएगा।
0: बिल्कुल अमित, इन कैफ़े की खास बात यह है कि इनकी सजावट

0: माहौल, संगीत और मेन्यू एक विशेष थीम के अनुसार तैयार किए जाते हैं और यही कारण है कि युवा वर्ग इनकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है। और ये कैफे स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और रचनात्मक गतिविधियों को मंच प्रदान करते हैं। कुछ कैफे प्रकृति, संगीत, कला और किसी खास संस्कृति को दर्शाते हैं। इनकी खास सजावट लोगों को बार बार आने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार जब भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ समय बिताने का सोचें तो किसी थीम बेस्ड कैफे का अनुभव जरूर ले सकते हैं। एक कप कॉफी के साथ आपको कुछ यादगार पल भी मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इन सभी कैफेज में सिर्फ डिजाइन और इंटीरियर ही नहीं है बल्कि यहाँ का खाना भी थीम बेस्ड होता है। यानी कि कुछ कैफेज में तो डे वाइज होता है कि मंडे को ये स्पेशल डिश मिलेगी, ट्यूसडे को ये मिलेगा, थर्सडे को ये मिलेगा, वेंसडे को ये मिलेगा, तो वो थीम रहती है हर दिन की भी, प्लस मौसम की भी थीम रहती है कि सर्दी, गर्मी, बरसात के हिसाब से अलग अलग जो आपको मेन्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड मेन्यू है आपके पास में, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे।
0: और आज अपने प्रोग्राम को लेकर व्यूज जरूर दें हमें, और हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568। और अमित, अब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

0: खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली CMHO ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है। जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है, यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और VMOU के कुलगुरु प्रोफेसर BL वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी AI आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहां ORS कॉर्नर बनाए गए हैं।
2: डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा आर्यन घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूक।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मॉनसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई, 40.8

0: डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत।

0: विश्व रक्तदाता दिवस पर आइए अब सुने 107 बार रक्तदान कर चुके रविंद्र पाल सिंह कप्पू से बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित श्रीमाली।
1: विश्व रक्तदाता दिवस पर 107 बार रक्त

0: प्रदान कर चुके उदयपुर के रक्तवीर रविंद्र पाल सिंह कप्पू जी से बातचीत।
1: सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, और आज विश्व रक्तदाता दिवस है और इसी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आपने अब तक सबसे ज्यादा बार उदयपुर शहर में रक्तदान किया है, लगभग 107 बार आप रक्तदान कर चुके हैं।
2: हाँ जी बिल्कुल
1: जी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने जो अब तक रक्तदान किया है, इसकी शुरुआत आपने कैसे करी थी? क्या आपने सोचकर ये कोशिश आपने करना शुरू किया कि मैं ब्लड डोनेशन लगातार करता रहूंगा, और ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली? सर,
2: मैंने जब ये, मैं 18 साल का हुआ था तब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था। मेरी चित्तौड़ में मासी रहती थी, उनको फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। मैं कॉलेज में बैठा हुआ था और मेरे नाना जी आए और मुझे अर्जेंट पकड़ के ले गए, चलो हॉस्पिटल, आपको ब्लड डोनेट करना है, मासी की तबीयत बहुत खराब है, उनको फ्रेश ब्लड की जरूरत है। तब मैं पहली बार वहाँ हॉस्पिटल गया और तब मेरे नाना जी ने वहाँ मुझे ब्लड डोनेट करवाया, और तब से वो पहली बार मेरा था। ब्लड डोनेट करते ही मेरी मासी की तबीयत एकदम ठीक हो गई, बहुत अच्छी हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। और जहाँ हॉस्पिटल में मैंने जो हॉस्पिटल की हालत देखी, वहाँ गरीब लोग, मरीज लोग कहीं इधर से उधर भटक रहे थे, ब्लड के लिए परेशान हो रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि अपने को भी कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए जिससे उदयपुर में कभी ब्लड की कमी ना हो। ये सोच के मैंने उस दिन से, जब मैं 18 साल के था तब से मैं ब्लड डोनेट किया और आज तक लगातार करता आ रहा हूँ।
1: तो इतने वर्षों से आपकी जो ये ब्लड डोनेशन की जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उसमें ऐसे कोई अनुभव आपको हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद रहे हो, या ऐसा लगा हो कि हाँ मेरा जो ब्लड दिया है वो सही जगह यूज हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं अपनी लाइफ में? सर
2: हाँ जी, मेरा सबसे बड़ा ये रहा था, मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था रात को 2 बजे, उसका मेरे पास अर्जेंट कॉल आया एमबी हॉस्पिटल में। मैं रात को 2 बजे उसके हम ब्लड देने गया और मैंने उसको ब्लड डोनेट किया और उसको ब्लड चढ़ाया गया। उसका खून काफी निकल चुका था शरीर से, मेरे ब्लड देने के बाद उसको काफी ठीक महसूस हुआ और उसको अच्छा लगा और वो स्वस्थ हो गया। वो अगले दिन उसको मेरे ब्लड से जो ठीक हुआ उससे मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे लगा कि नहीं बाकी अगर ऐसे किसी के काम सब लोग आते रहे और किसी की जान बचाते रहे तो ये एक मानव सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, ये हमेशा अपन को ब्लड डोनेट करना चाहिए और अपन अब लगातार लोगों की सेवा, मानवता की सेवा के लिए अपन ब्लड डोनेट करते रहेंगे। तब से मैं लगातार करते ही आ रहा हूँ ब्लड डोनेट,
1: क्योंकि अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में है कि ब्लड डोनेशन से कुछ ऐसा हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तो इन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है, जैसा कि बहुत सारी हैं। तो आपको क्या लगता है किस किस तरह की भ्रांतियां होती है और क्या सच में उसके कुछ इफेक्ट होते हैं या सिर्फ भ्रांतियां ही हैं?
2: हाँ जी, काफी लोगों को ये भ्रांतियां हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी, थकावट हो जाएगी, कई लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से चक्कर आ जाते हैं, कईयों को लगता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, कईयों को लगता है कि मैं दुर्लभ हो जाऊंगा, कई सुई चुभने से भी डरते हैं, कई घबराहट से डर जाते हैं, और किसी को, कई लेडीज को कभी ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से मैं शायद मां नहीं बन पाऊंगी। इस प्रकार की कई कई भ्रांतियां हैं जिसको मैंने काफी दूर करने की कोशिश की है। मैंने इस पे एक बुक भी लिखी है, रक्तदान महादान, जिसमें मैंने लोगों को हमेशा जागरूक किया है कि आप ब्लड डोनेट करें, आप काफी उससे स्वस्थ रहेंगे, और ये जो जिस प्रकार की भ्रांतियां दूर करने का मैंने प्रयास किया, काफी लोगों को उस पता चलने के बाद वो काफी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और काफी भ्रांतियां दूर हुई है।
1: आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी आपके स्वास्थ्य पर या दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
2: लगातार ब्लड डोनेट करते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं उतना आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपका पुराना खून निकल जाता है और नया खून बनता है जिससे आप में नई ऊर्जा आती है। जितनी ये ब्लड की वजह से कई प्रकार की बीमारियां, जैसे आपके ये हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये जो बीमारियां होती है ना, ये ब्लड की वजह से। जितना आपका अगर ब्लड पुराना निकल जाएगा और नया खून बनेगा ना, तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होगी और आपको बहुत अच्छा और स्वस्थ लगेगा। तो जितना आप ब्लड डोनेट करके खुद स्वस्थ रहेंगे, और एक बार ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जान बचती है, तो आप कितना और भलाई और

0: अच्छा इंसानियत का काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं और इसी सोच के मैं हमेशा ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, और आपके आशीर्वाद से मेरी अभी 59 एज है और मेरे पर कोई किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं है।
1: अगर हमारे जो लिसनर्स हैं जो आपकी बात आज सुन पा रहे हैं, अगर वो हम ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित करें, और तो उनको किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो ब्लड डोनेट करने के बाद में क्या करना है या ब्लड डोनेशन से पहले क्या करना है, इसके बारे में आप कुछ राय देना चाहेंगे?
0: देखिए सर, ब्लड डोनेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अपना खुला दिमाग रख के आराम से आए, ब्लड डोनेट करें, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको खाली थोड़ा सा ये डर रहता है कि मुझे सुई चुभेगी, दर्द होगा, आजकल वो भी इम्पोर्टेड सुई आ गई है, किसी प्रकार का आपको उसमें कोई दर्द नहीं होता। हाँ, मैं आप युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाए, कृपया खाली पेट ना करें, उस आप अच्छे नाश्ता करके जाएं या अच्छा खाना लेके जाएं, क्योंकि ब्लड डोनेट करते समय आपका पेट भरा होना चाहिए, पानी आपने खूब पिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट कई बार ब्लड डोनेट करने से घबराहट हो जाती है, तो वहां फिर एकदम माहौल बिगड़ जाए, उनको लगता है कि क्या हो गया एकदम कई लोगों को। तो ये अगर आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, खाली पेट नहीं करें और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लड डोनेट करने के 10 मिनट बाद आप वापस उठ के आराम से आप कोल्ड कॉफी पिए, गर्म कॉफी पिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ले लें, और उसके बाद आप 10 मिनट रेस्ट करके और फिर आप अपनी दिनचर्या पे निकल जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। हमने तो इतनी बार ब्लड दिया, कोई दिक्कत नहीं आती इससे।
1: एक आखिरी सवाल है कि विश्व रक्तदाता दिवस है आज, इस अवसर
0: हाँ
1: पर जो हमारे श्रोता हैं, इनको आप किस तरह से कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई अपनी बात कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे सर?
0: देखो, मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि युवाओं का जो ब्लड होता है बहुत फ्रेश और अच्छा ब्लड होता है, तो जिसको भी चढ़ेगा उस पे उसका एकदम अच्छा असर होगा। क्योंकि आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं, पहले तो आप खुद स्वस्थ रहते हैं, फिर लोगों का भला होता है। तो आप कोई भलाई का काम करें, इस उम्र से अगर आप अपने भलाई का काम चालू कर देंगे तो आप कितना बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। आप जितनी बार ब्लड डोनेट करते हैं उतनी बार आपका जो बीमारियां हैं सब दूर होती हैं। मैं तो युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आजकल जो ये युवा पीढ़ी जो ब्लड अपने बर्थडे पे या किसी दूसरे पे जाके होटलों में खर्चा करते हैं, पैसा बहाते हैं, उसकी जगह आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएं, खुद ब्लड डोनेट करें और ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि युवाओं का ब्लड जो होता है वो बहुत अच्छा और बढ़िया माना जाता है। तो जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे, मेरी राय यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, खुद स्वस्थ रहें और 4 लोगों की जान बचाएं, यही मेरी आशा और यही मेरी उम्मीद है, मैं यही अपील करना चाहता हूँ।
1: जी, आकाशवाणी उदयपुर से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर।
0: ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।
2: विश्व रक्तदाता दिवस पर अभी आप सुन रहे थे रविंद्र पाल सिंह कप्पू से बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे थे अमित श्रीमाली, और यूं ही श्रोताओं बने रहिए हमारे साथ।
3: और विद्या, इसी के साथ में कुछ संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला संदेश हमें मिला है कमल जी धारावती और विष्णु जी की तरफ से विनायक कॉम्प्लेक्स से, और ये कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम का प्रवाह बहुत ही अच्छा है, साथ ही आप जो जानकारियां नमस्कार उदयपुर में हमारे साथ साझा करते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है।
2: और
3: बहुत
2: एक मैसेज अमित मेरे पास भी आया है हितेश जी, सुनील जी का, इनको मेवाड़ के घाटों पर जो हमने जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद आपका।

0: तो अमित, एक और मैसेज आ गया है हमारे पास विक्रम शर्मा का। ये लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था आज का, धन्यवाद विक्रम जी।
1: और इसी के साथ में एक मैसेज और मिला है अंकिता जी का चित्तौड़ से। वो कहती हैं कि अमित जी और विद्या जी, आप दोनों को नमस्कार, और साथ ही आपका यह जो प्रोग्राम है हम कोशिश करते हैं रोज़ाना सुने, और आज का प्रोग्राम क्योंकि रविवार है तो हम थोड़ा फुर्सत में बैठकर चाय के चुस्कियों के साथ सुन रहे हैं, और आपने जो जानकारी दी, खासतौर पर आपने मेवाड़ की घाट में जो चित्तौड़ की जानकारी दी, वो बहुत ही शानदार लगी। बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपको मैसेज करने के लिए।
0: और अमित, अब देख रहे हैं घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही है, वक्त हो चुका है प्रोग्राम से विदा लेने का। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या, मेरे साथ
1: अमित।
0: तो दीजिए इस गीत के साथ ही इजाज़त, नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। लीजिए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

ये गज़ल थी जगजीत सिंह की आवाज़ में। सुगम संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली गज़ल सुनते हैं तलत अजीज़ की आवाज़ में।

सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी की उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुने कुछ फिल्मी तराने पुरानी फिल्मों से। पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम गाइड।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: पुरानी फिल्मों से फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली पेशकश तलाश फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत था फिल्म ज़मीन आसमान से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। पुरानी फिल्मों से फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत फिर लता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है

आशा भोंसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना परिंदा फिल्म से ये गीत। पुरानी फिल्मों से फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। हालांकि अनौपचारिक शुरुआत इससे 3 बरस पहले हो चुकी थी। तब ब्रिटिश हुकूमत ने प्राइवेट रेडियो को लाइसेंस देने का फैसला किया था और इसके तहत मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के करीब रेडियो क्लब से पहला प्रसारण किया गया था। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। 8 जून 1936 को इस कंपनी का नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। ये नाम काफी सोच विचार के बाद रखा गया था और ये दुनिया भर की प्रसारण संस्थाओं में सबसे निराला है। आकाशवाणी तो और भी निराला नाम है। दरअसल मैसूर रियासत ने जब अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया तो उसने पुराणों और मिथकों से प्रेरणा लेकर इसे आकाशवाणी का नाम दिया। आज आकाशवाणी अपने 90वें बरस की तरफ बढ़ रही है। पूरे आकाशवाणी और विविध भारती परिवार को इस विशेष मौके पर बहुत सारी बधाइयां।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, सुबह के 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गोखड़ा।

गोखरा कार्यक्रम हुनवाला सगला ही श्रोतागणा ने संगीता भाईसारू राम राम सा खमा गणी सा। गर्मी गणी पड़ रही है न तावड़ा री तो पूछो ही मत। अत्रो ताबड़ो पड़ रियो है कि मनक तो कई पशु पक्षी भी घणा ही गबराई रहा है। तो आपरो खुद रो अपने परिवार रो सब रो ध्यान रखो और लारे लारे हुन तारो माड़ा प्यारा सा राजस्थानी लोक संगीत रा राजस्थानी लोकगीत जने में जने हुनवा में कलेजा में ठंडक मिले सा। तो हुनवा आपने मामे खान री आवाज़ में यो प्यारो सो लोकगीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गोखड़ा कार्यक्रम आप सुन रहे हो संगीता भाई सारी लारे। कार्यक्रम में आगे चला और तावड़ा री आप बात कर रहा हाँ तो थोड़ो थोड़ो पानी दिन भर पीता रहा तो अपने घर में आराम मिले सा। जिस तरह नींबू पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, सत्तूरो पानी घणो ही अच्छो वेवे है। प्रोटीन भी आजकल जो प्रोटीन रो चलन चाल रो प्रोटीन पे पीवा रो तो सत्तूरो पानी तो बहुत ही फायदो करे है और बहुत अच्छो वे, तो वो भी आप वणाइन पी सको हो। और लस्सी छाछ या अपने देसी ड्रिंक्स है ये तो आप ही पी सका हाँ। और लारे लारे आम रस, केरी री छाछ, पुदीना री वणी में पत्तियाँ डालन अगर पियो तो हिवड़ा में गणी ठंडक पड़े सा। तो ठंडक री बात कर रहे हाँ और हुन कलेजा में ठंडक तो जदी भी पड़ेगी जदि आप ही अच्छो अच्छो संगीत होना हाँ। तो आपने होना वहाँ आगलू लोकगीत लारे वणियारी जी।

राजस्थानी में आप ही यदि कन्ने कालो टीको लगावा हाँ या बालक वे वे है कोई घणो ही रूपारो लाग रो वे, चाहे वो बालक वे चाहे जवान वे चाहे बूढ़ो वे, घणो रूपारो लागो वे तो आप ही अपनी बोली में थुतकार देवा कि नज़र नहीं लागे सा। तो आओ हुणा एक नयो प्यारो सो गीत थुतकारो।

गोखरा कार्यक्रम आप सुन रहा हो आकाशवाणी उदयपुर लारे। श्रोताओं घना ही रूपारा रूपारा राजस्थानी लोक संगीत आप तक पहुँचाई रहा हाँ। और अभी होना कार्यक्रम रो आखिरी लोकगीत अंडिला रे दीजो संगीता बाईसा ने इजाजत। राम राम खमा गणेशा।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना राजस्थानी लोक संगीत से सजा कार्यक्रम गोखड़ा। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुगम संगीत ऐसा संगीत जो मन को छू ले, मन की गहराइयों में जो उतर जाए, ऐसा संगीत। इसमें न रागों की जटिलता है, न शास्त्रीय संगीत की कठिनता है, लेकिन ये ऐसा संगीत है जो हर उम्र के मोड़ पर सुना जा सकता है और उतना ही रूहानी लगता है। तो सुगम संगीत के इस कार्य

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। मैं हूं आपकी होस्ट संगीता और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कुछ हसीन गज़लें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़ी, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मेहंदी पंकज उदास की आवाज़ में, और इसी के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज रविवार है। साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल, जो कि हम बच्चों के लिए प्रसारित करते हैं, समय हो चुका है। आइए सुनते हैं जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: जय हिंद बच्चों।
1: सरिता बहुत खुश खुश नजर आ रही हो भाई, खुश रहना चाहिए। बच्चों से भी कहेंगे खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है उनका
0: वेकेशन।
1: और कहते हैं ना, संडे तो बिल्कुल होता है फंडे, और हम उसमें और फन जोड़ देते हैं बच्चों के लिए। तो सरिता, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों से। सबसे पहले तो हम सरिता तुमसे भी ये जानना चाहेंगे कि छुट्टियों में तुम कहीं गई या जा रही हो।
0: बस अब जाऊंगी मैं भाई, बच्चों को घुमाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत सारी नई नई चीजें हम सीख कर आते हैं, और सीखनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों जो वेकेशंस होते हैं ना, आपके मौज मस्ती के दिन तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ नई नई चीज़ों को सीखने का बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है, और आप स्किल जो आपकी स्किल होती है वो उसमें डेवलप भी होती है। और नई नई चीज़ों को पता है क्यों सीखना चाहिए माला?
1: क्यों सीखना चाहिए बताओ?
0: क्योंकि सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना वो एक ही तरह से चलता है, तो वो उसको वो अच्छे आइडियाज नहीं दे पाता है।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बिल्कुल।
0: हम उसको नई नई खुराक देते हैं, नई नई हॉबीज या कुछ भी नया कुछ सीखते हैं ना, तो हमारा दिमाग दुगना काम करने लग जाता है, या ना पैना हो जाता है। कहते हैं ना, एक चाकू की जिसमें धार नहीं होती है उससे आप सब्जी कैसे काटोगे?
1: बिल्कुल,
0: जब आप उसको अच्छे से धार बना दोगे तो वो कितनी अच्छी सब्जियां काटने लग जाएगा। ऐसे ही हमारा बच्चों दिमाग होता है, इसको आप अच्छे से धार, यानी कि नए नए जो आइडियाज आप देते हैं, नए नए आइडियो से हमारा दिमाग इतना पैना हो जाता है कि हम और नई नई स्किल्स डेवलप करने लग जाते हैं, पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ कितना कुछ नया नया हम सीख जाते हैं, और नया वर्ड भी कितना अच्छा लगता है ना।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: नया मतलब न्यू होप, आशा, सब वो लेकर आता है हमारे साथ।
1: और देखो ना सरिता, छुट्टियां तो होती इसलिए भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों आप पढ़ो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो आपने पढ़ा है वो आप भूलो नहीं, कभी कभी आपको रिमाइंड कर लेना। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप घूमने जाओ बाहर, बिल्कुल आउटिंग पे जाना चाहिए, छुट्टियां मिली इसलिए कि आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाओ। साल भर बच्चे पढ़ते हैं। देखो सरिता, हम ये नहीं कहते कि आजकल छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का बहुत तनाव है, लर्न करना है, होमवर्क करना है, आज क्लास में ये सीखा है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं सरिता। लेकिन हम बच्चों से ये कहेंगे, जब भी आप आउटिंग पे जा रहे हैं तो जो बेसिक से जो चीजें हैं, जो मम्मी ने बताई, जो टीचर्स ने बताई, उसको फॉलो जरूर करना है। देखो सरिता, कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तेदारी में भी जाते हैं, है ना, बुआ के, मौसी चाची के यहाँ जाते हैं, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बड़े उल्लासवश है ना, इधर उधर सामान तोड़ देते हैं, इधर नुकसान कर देते हैं, हालांकि वो
0: रख देते हैं।
1: वो हमें कह तो नहीं पाते, लेकिन हमारे जाने के बाद उनको बहुत बुरा लगता है। तो आज हम बच्चों से यही बात करेंगे कि बच्चों, यदि आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं होटल में स्टे कर रहे हो, तो प्लीज आप थोड़ी मौज मस्ती, हम ये नहीं करें मौज मस्ती ना करें, लेकिन देख के करें, संभल के करें, सामानों के साथ नहीं करें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है बच्चों माला दीदी ने, क्योंकि हमें भले ही वो दूसरों का घर नहीं है, वो हमारे अपनों का ही घर है। जैसे हम अपने घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही हम कहीं भी जाएं, चाहे हम होटल में रुकें, चाहे हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकें, लेकिन हमें अपना सामान व्यवस्थित करना जरूर

0: चाहिए। और ये छोटी छोटी हेल्प ना मम्मी को बहुत ज्यादा
1: अच्छी
0: खुश कर देती है
1: बिल्कुल।
0: कि भाई मेरा बेटा या मेरा मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई, कम से कम वो खुद का काम तो कर ही लेते हैं। ये
1: हाँ।
0: बहुत अच्छी बात है बच्चों, अपना सेल्फ जो काम होता है वो हमें खुद ही करना चाहिए, और इन छोटे छोटे कामों से हम हमारी मम्मी की जो है ना बहुत बड़ी मदद कर देते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: मदद कर देते हैं। और सरिता हम जाते हैं, जिनके यहाँ जाते हैं उनको भी अच्छा लगता है, हमारे आने के बाद वो कहते हैं बच्चे बहुत
0: बहुत
1: संस्कारी थे,
0: समझदार
1: बहुत
0: है
1: समझदार
0: बिल्कुल
1: थे, देखो उन्होंने हमारा ना तो घर गंदा किया ना सामान अव्यवस्थित किया,
0: बिल्कुल
1: तो ये हमारे लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा है। और हम हमारे बच्चों को जरूर हमें ये सिखाना चाहिए कि जिस तरह हम अपने सामान का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ऐसे कहीं जाते हैं चाहे वो आउटिंग पे जाएं या किसी
0: बिल्कुल
1: रिलेशन में जाएं, हम ध्यान रखें। और सरिता एक चीज़ और
0: हाँ
1: ध्यान हम बच्चों को जाने से पहले हमें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि बच्चे खाने में बहुत आनाकानी करते हैं।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: भाई गाना तो कितना अच्छा सुनवाया है मम्माला की, आज मैं ऊपर
4: आज सुना नीचे। भाई हम हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के यही चाहते हैं कि बच्ची कह सके, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो या हेल्थ का हो या स्पोर्ट्स का हो, कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। लेकिन ये सब तभी होगा सरिता जब वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत होंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए योगा और प्राणायाम जो है, अभी हमने मतलब मनाएंगे हम योग दिवस, आने वाला है विश्व योग दिवस बच्चों, तो वो हम मनाएंगे। और मनाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपको उसको अपनी रूटीन में जरूर शामिल करना है। और आइए बच्चों, अब आपको सुनवा देते हैं एक ओबी रिकॉर्डिंग, एक प्यारी सी बच्ची की बाल प्रस्तुति। आइए सुनते हैं ये वाली ओबी रिकॉर्डिंग।
5: जय हिंद बच्चों।
6: जय हिंद दीदी।
5: बच्चों आज हम बहुत सारी बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी सी बच्ची आई है, तो उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताओ।
6: दिव्यांशिका।
5: दिव्यांशिका कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
6: प्रेप।
5: प्रेप में। अच्छा दिव्यांशिका, आपके घर में कौन कौन है?
6: पापा। मम्मा। दीदी।
5: दीदी। अच्छा आपकी दो बड़ी बहन है? दो बहनें हैं आपकी बड़ी?
6: यस।
5: अच्छा वो आपको कभी डांटती हैं?
6: नहीं
5: नहीं डांटती, प्यार करती हैं। अच्छा दीदी, अच्छा आपका घर का नाम क्या है?
6: कानू।
5: कानू। अच्छा अच्छा, तो कानू हम भी आपको कानू ही नाम से बुलाएंगे। कानू आप ये बताइए कि अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं? छुट्टियां चल रही हैं?
6: यस।
5: तो छुट्टियों में आप क्या करती हो घर पर?
6: खेलती हूँ।
5: खेलती हूँ, कौन से गेम खेलते हो?
6: फोन में गेम।
5: फोन वाले गेम खेलते हो। बच्चों देखो, हम आपसे हर बार कहते हैं कि भाई देखो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आउटडोर गेम खेलिए, छुट्टी मिली है सुबह और शाम, बिल्कुल आप आउटडोर गेम खेलिए। जब भी आपकी दीदी को, मम्मी को, भैया को, जब जिसको समय मिले उनके साथ खेलिए, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है?
6: लेडी फिंगर।
5: लेडी फिंगर, वाओ। पता है दिव्यांशिका, हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको सब्जी में क्या सब्जी पसंद है, तो जानते हो वो क्या कहते हैं? लेडी फिंगर एंड पटेटो, ये दोनों सब्जियां बच्चों को बहुत पसंद होती है। आपको मिठाई में कौन सी मिठाई पसंद है?
6: पेड़े।
5: पेड़े, अरे वाह भाई दिव्यांशिका, ऐसा नाम ले रही कि हमारे मुंह में भी पानी आने लगा है। अच्छा और आपकी मम्मी आपको डांटती है?
6: नहीं
5: नहीं डांटती। क्यों, आप कभी कोई गलती नहीं करती हो? कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे मम्मी को गुस्सा आता हो? नहीं करती हो? नहीं, नहीं करती हो। अच्छा अच्छा अच्छा दिव्यांशिका, आज आप हमें क्या सुनाओगे? क्या टाइटल है आपकी पोएम का?
6: वाइज ओल्ड ओवल।
5: ठीक है सुनाओ।
6: द वाइज ओल्ड ओवल लिव इन द ओक, द मोर ही सॉक, द लेस ही स्पोक, the less he spoke the more he saw. Why can't we all be the wise old bird? An elephant goes like this and that, he's terribly big, he's terribly fat, he has no fingers, he has no toes, but goodness creation, what a long nose.
5: बहुत ही प्यारी पोएम सुनाई, और अब दूसरे भी कोई पोएम सुनाने वाली हो आप?
6: Yes.
5: कौन सी पोएम सुनाओगे?
6: हिंदी की।
5: हिंदी की सुनाओ।
6: भोली नानी सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी, तुमको मैं देती संदेश।

0: जब भी बोलो मीठा बोलो, पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, कभी काम से जी न चुराओ, जो करना है अब कर डालो, कल पर उसको कभी न डाल।
1: नानी की बहुत ही प्यारी पोएम सुनाई बच्चों। आपको पता है ना, गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के दादी के घर जाते हैं, और पता है दिव्यांशिका, हम दादी और नानी के पीछे पड़ जाते हैं, भाई हमें कहानी सुनाओ, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाओ, और दादी नानी बहुत प्यार भी करती है। लेकिन दादी नानी ने हमें एक सीख भी दी है, उन्होंने कहा है कभी भी कड़वे बोल मत बोलो, क्योंकि हम कड़वा बोलते हैं तो सामने वाला नाराज हो जाता है, हमें हमेशा अच्छा और मीठा ही बोलना चाहिए। अब दिव्यांशिका आप दूसरी पोएम सुनाओगी?
0: यस।
1: कौन सी पोएम सुनाओ?
0: हिंदी की
1: सुनाओ।
0: काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कुकू का गीत सुनाती, कभी नहीं मेरे घर आती, क्या तुमको भी माँ की याद सताती, बच्चों का दिल बहराती, यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते।
1: बहुत प्यारी कविता सुनाई बच्चों आपने, सुना कि कोयल, देखो कोयल की तो आवाज़ ही बहुत प्यारी होती है, कोयल कूकती बहुत अच्छा लगता है। और देखो बच्चों, अभी जो गर्मी चल रही है तो हमें पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, और यदि अगर हम दाने पानी की व्यवस्था करेंगे तो हमारे घर में कोयल है, तोता है, मोर है, आने लगेंगे। यदि आप चाहते हो कि पक्षियों की चहचहाट आपको सुनने को मिले तो प्लीज़ आप दाने पानी की व्यवस्था करें। और कानू, जिसका घर का नाम है, और दिव्यांशिका, आपसे बात करके हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू
2: बच्चों। अभी आप सुन रहे थे ओबी रिकॉर्डिंग। बाल प्रस्तुति के रूप में एक प्यारी सी बच्ची ने सुनाई है आपको ढेर सारी कविताएं, और साथ में की थी माला दीदी ने उससे बातचीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और सरिता, आज हम एक खास दिन भी मनाते हैं।
3: हाँ, कौन सा?
2: विश्व रक्तदान
3: दिवस।
2: भाई, बच्चों से हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप रक्तदान करें, लेकिन बच्चों से हम ये जरूर कहेंगे कि बच्चे अपनी डाइट को बहुत अच्छे से लें, पौष्टिक आहार लें और जल्दी से ग्रो हो, और जब वो रक्तदान करने लायक एज में आ जाए तो उनको खून की कमी ना हो। क्योंकि देखो सरिता, जो रक्तदान करने का भी जो एक क्राइटेरिया है, तो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बताया गया कि 12.5 होना चाहिए,
3: हाँ,
2: और जो पुरुष है उनका कम से कम 13 होना चाहिए, 13 HB होना चाहिए, तभी वो रक्तदान कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम अच्छी डाइट लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, जूस फल है ना, और सीड्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब लेंगे तभी हमारा होगा। और कहते हैं सरिता कि जो ये रक्त है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो केवल मानव के शरीर में बनता है।
3: बिल्कुल।
2: और मानव शरीर ज्यादा से ज्यादा अच्छा रक्त बनाए उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेनी होगी।
3: बिल्कुल।
2: और यदि हम स्वस्थ हैं तभी तो हम किसी को रक्तदान कर सकते हैं।
3: और रक्तदान करने से कितने सारे जीवन हम बचा लेते हैं बच्चों।

0: तो आपको तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप भी किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे आपके कोई घर में बड़ा है तो आप उसको कह सकते हैं, जब कभी किसी को जरूरत हो जाती, कभी एक्सीडेंट्स, मतलब कितने सारे होते रहते हैं लाइफ में, तो किसी को भी कभी भी जरूरत होती है तो हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। 14 जून को बच्चों हम ये मनाते हैं। और रक्त एक जीवन रक्षक वस्तु है माला, जिसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, केवल मानव शरीर में ही बनाया जा सकता है। और रक्तदान किसी जरूरतमंद का अनमोल जीवन बचा सकता है। अतः किसी भी अन्य कार्य से बढ़कर आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है कि हमने किसी के जीवन को बचाया है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अर्थात इस मतलब दूसरों के हित से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। तो ये जरूर हमको करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम चैरिटी तो हम करते ही हैं, लेकिन हमारे रक्त से किसी का जीवन बच जाता तो वो हमें खुशी कितनी देता है।
1: बिल्कुल।
0: अरे भाई मैंने कितना अच्छा काम किया।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे, कभी आपने रक्तदान किया?
0: बिल्कुल, मैंने भी किया है रक्तदान।
1: मैंने भी किया, मैंने 7 बार रक्तदान किया, और अब भी मैं सोचती हूँ
0: बिल्कुल
1: कि मुझे अब भी करना चाहिए। हालांकि बीच में मेरा थोड़ा एचबी कम हो गया था, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई तुम अभी नहीं कर सकते हो।
0: तो अभी लेटेस्ट मेरे हस्बैंड भी देने के लिए गए थे, किसी को जरूरत थी, तो उनका भी 11 आया था, तो वो भी नहीं दे पाए थे। तो
1: लेकिन फिर पता है कि जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका एचबी कम है, तो मैंने अपने खाने में अच्छी डाइट शामिल की,
0: बिल्कुल,
1: और अब मेरा 13 हो गया, अब मैं रक्तदान कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और देखो सरिता कहते भी है रक्तदान महादान, आपका ये दान किसी के जीवन को बचा सकता है। देखो सरिता, जो हम दान करते हैं ना, जो हम वस्तु देते हैं, और कहना चाहिए कि हम पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, वो एक दान अलग है, लेकिन ये दान तो साक्षात जीवन दान है। कई बार एक्सीडेंटल इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई वो फला हो गया, इस ब्लड ग्रुप की जरूरत है। अब सोचो कि यदि आपके पास वो ब्लड ग्रुप है तो आप तुरंत जाते हो, देते हो, और आपने किसी का जीवन को बचाया, कितनी खुशी होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई इसके लिए हम जो हमारे प्रोग्राम को सुने सभी श्रोताओं से कहेंगे कि भाई अपने आप को हस्त पुष्ट रखें, अच्छी सेहतमंद रहें, डाइट लें, और है ना अपना भी ध्यान रखें, और जब कभी जरूरत पड़े तो प्लीज आप रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने के बहुत सारे फायदे हैं। लोगों में भ्रांति है सरिता कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाए, कमजोरी आ जाएगी, बल्कि डॉक्टर कहते हैं कि जैसे आप रक्तदान करते हैं आपका तेजी से फ्लो होता है, तेजी से बनता है और है ना नया रक्त का संचार होना ही चाहिए। तो प्लीज जब कहीं जहां किसी को जरूरत हो आप रक्तदान जरूर करें। यदि आप नहीं कर सकते तो आसपास में नंबर फ्लैश करें, क्योंकि न जाने कौन कितनी मुसीबत में, और आपकी एक छोटी सी मदद से उसका जीवन बच सकता है।
0: बिल्कुल। और इस बार की जो थीम है ना 2026 की, वो है मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं, यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। यह विषय बहुत ही अच्छा है, और इसको इसके महत्व को लोगों को जरूर बताना चाहिए हमें। और रक्तदान के अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरों को प्रेरित करें, और आप भी जरूर करें, और दूसरों के जीवन को अनमोल जो जीवन होता है उसे जरूर बचाएं।
1: और देखो सरिता, यदि हम रक्तदान करते हैं और हमें पता लगता है जिनको हमने ब्लड दिया वो बच गया, तो हमें बहुत खुशी होती है। तो जाते जाते हम यही कहेंगे रक्तदान महादान। जब भी आपको मौका मिले प्लीज आप रक्तदान करें, रक्तदान करवाएं, और यदि आप नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, तो प्लीज प्रेरित तो कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल भाई, वक्त हो चला है हम बच्चों से विदा लेने का। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी बच्चों ने सुना अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत और आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। किसी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने उससे यही कहा कि बस यही तो खराबी है। तो श्रोताओं, अच्छा होना भी आजकल खराब

अब है, हम कुछ पंक्तियाँ आपके लिए बोलते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेता है जिसे बर्बाद करना होता है। गुलजार साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं फिल्म संगीत का, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। कुछ लफ्ज अधूरे हैं, कुछ ख्वाब बाकी है, तेरे साथ बिताने को अभी कई एहसास बाकी हैं। मोहब्बत तो हर रोज बढ़ती है तुझसे, लगता है दिल में अभी कई जज्बात बाकी हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहरा से।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आपकी दोस्त संगीता के संग। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। लफ्ज कम पड़ जाते हैं तेरी तारीफ में, तेरी मुस्कान ही काफ़ी है

तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म मेरी हर खुशी का किस्सा है। कुछ लफ्ज़ नहीं पूरी ज़िंदगी हो तुम, मेरे दिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो तुम। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तेरे नाम से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जोधा अकबर से जावेद अली की आवाज में। श्रोताओं, हम अभी आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में जिस्म फिल्म से ये गीत।

मीडियम वेव 286.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, इसी गीत के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। आइए अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।

जो अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र मंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी AI आधारित सॉफ्टवेयर के मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ साइला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज

0: के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरोंजी जा रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं और समय है महिलाओं के लिए पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत का, जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम महिला जगत। आइए सुनते हैं।

0: नारी है शक्ति, नारी सम्मान, उससे ही रोशन है यह जहान। उसकी रक्षा करना कर्तव्य हमारा, सुरक्षित हो हर घर और द्वार। इन्हीं खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ महिला जगत कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा व्यास और
1: प्रीति भटनागर।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ सखियों, देखिए हमने कुछ पंक्तियाँ ऐसे ही कही है कि सुरक्षित हो हर घर और द्वार। जी हाँ, सुरक्षा महिलाओं की होनी अत्यंत आवश्यकता रहती है और महिला सुरक्षा और प्रमुख टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हमेशा उनके पास में होने ही चाहिए। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, महिला सुरक्षा मतलब देखा जाए तो सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ समुदाय का विकास करना।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा समाज जहाँ जो है महिलाएं निर्भीक होकर के अपना जीवन बिता सके, दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त जो है वो अपने किसी भी जरूरी काम के लिए बिना बेहिचक अपने घर से निकल सके। साथ ही साथ महिलाओं के अंदर एक इतनी शक्ति या एक ऐसी साहस की भी आवश्यकता होती है कि वो बिना डरे, है ना, जहाँ भी उनको शिकायत करनी है या जहाँ भी उनको कॉल लगाना है वो लगा सके। साथ ही साथ अपने घर वालों के साथ भी अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो आगे बढ़ सके।
0: बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ऐसे में उनका सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हमारी सखियाँ होती है, महिलाएं होती है, खुद की सुरक्षा हेतु हमेशा तैयार रहती है, फिर भी महिलाओं की सुरक्षा केवल परिवार या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज का भी दायित्व हो जाता है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से संकट की स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल सही है सखियों, महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण कानून और अधिनियम लागू हैं। यह कानून जो है महिलाओं को उनके कार्यस्थल, चाहे वैवाहिक की बात करें हम, चाहे घर और समाज की बात करें।

0: शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक शोषण से बचाने के लिए एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अभी आप बात कर ही रहे थे कि बहुत सारी ऐसे टोल फ्री नंबर भी हमारे दिए हाँ। गए हैं, उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को हम जानकारी दे देते हैं। जैसे कि पहला नंबर है 112, यह आपातकालीन सेवा यानी कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, अग्निशमन या चिकित्सा सहायता प्रदान के लिए किया जाता है।
0: बिल्कुल। साथ ही साथ 1091, यह एक महिला हेल्पलाइन है जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर सहायता के लिए वे कॉल कर सकती हैं।
1: बिल्कुल। इसके साथ ही एक नंबर और है 181, महिला सहायता, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, कानूनी सलाह के लिए, अन्य सहायता के लिए भी ये नंबर आपके पास में होने चाहिए, इस पे आप आसानी से कर सकते हैं। साथ में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए
0: जी।
1: इसके अलावा
0: 1930 ये साइबर अपराध हेल्पलाइन है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट या साइबर अपराध की शिकायत के लिए बनाया गया है।
1: बिल्कुल। तो ये नंबर तो आपके पास में होने ही चाहिए। देखिए, महिलाएं हैं, सुरक्षा करना खुद की सबसे पहली जिम्मेदारी है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपातकालीन नंबर आपके मोबाइल में आप सेव कर सकती हैं। आप यात्रा के कहीं निकले हैं, अपने परिजनों के साथ में निकले हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनको आप लोकेशन की जानकारी आप दे सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: सोशल मीडिया पर आप व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी आप इतनी ही जानकारी दें जितने आपको आवश्यक लगे। किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न को नज़रअंदाज न करें और तुरंत आप शिकायत करें और आत्मरक्षा के लिए बुनियादी कौशल आप सीख सकते हैं और तब आप एक सुरक्षित माहौल अपने आप में तैयार आप कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। साथ ही साथ जो है एक 112 इंडिया ऐप करके है जिसके अंदर भारत सरकार का यह एक आधिकारिक ऐप है जो संकट के समय आपकी लोकेशन और आपातकालीन संदेश संबंधित अधिकारियों तक तुरंत भेजता है।
1: बिल्कुल। और महिला अधिकार और शिकायत निवारण, यदि आपके अधिकारों का हनन होता है या आप किसी समस्या की रिपोर्ट करना चाहती हैं तो आप सीधे राज्य के राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती है।
0: बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे मतलब तरीके हैं
1: हाँ।
0: और बात अगर हम करते हैं तो इसका दायरा क्या रहता है, जैसा कि अभी आपने बताया ही था पुष्पा कि ये कानून जो है घर में रहने वाली हर महिला है ना, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन हो, बेटी हो या लिव इन पार्टनर है, इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है।
1: बिल्कुल।
0: और घरेलू हिंसा की अगर हम परिभाषा लेते तो उसके अंदर आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इसमें शारीरिक मारपीट, गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तंगी जैसे कि खर्च वगैरह नहीं दिया जाता है और दहेज के लिए अगर दबाव डाला जाता है तो वो भी इसके अंदर शामिल होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही आप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण से बचाता है। इसके तहत किसी भी कार्यालय, दुकान या संस्थान जहां पर कर्मचारी से इस प्रकार की शिकायत हो तो आप आराम से कर सकती हैं। यह महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य होता है।
0: बिल्कुल सही है। तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, जागरूक रहने के लिए जो है आप जितनी हमने अभी तक जानकारी दी है उनका उपयोग कर सकती हैं। साथ ही साथ जो है किसी भी आपराधिक मामले या खतरे की स्थिति में आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और महिला पुलिस थानों की मदद लें।
1: बिल्कुल सही कहा। बेटी, बहन और माँ का रूप उससे ही रोशन जहान है, इससे ही खिलता जीवन का स्वरूप। अब कहते हैं कि डर और हिंसा का अंत जहाँ पर होगा वहीं पर सुरक्षा का मंत्र भी फैलेगा। हमारी महिलाएं जब शिक्षा, साहस और आत्मविश्वास से भरी होगी तो ये नारी की शक्ति का प्रकाश सारे तरफ फैल जाएगा और अन्याय के आगे नहीं झुकना कभी, सत्य की राह पर रुकना नहीं। आओ मिलकर यह प्रण करें, सुरक्षित हो हर नारी का जीवन, यही हमारा दायित्व। तो अब लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। हम फिर लौटेंगे, जाइएगा नहीं, फिर हमारी आगे रहेगी बातचीत शुरू।

0: बहुत ही प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना चेन्नई एक्सप्रेस का, है
1: बिल्कुल
0: ना। तितली बन दिल उड़ा कहीं दूर दूर, है ना। और हमारा दिल भी ऐसे ही हो गया है, कहीं दूर दूर होता जाता है।
1: हाँ
0: क्यों? क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो गई है। अब
1: बिल्कुल
0: हम देख रहे हैं कि महिलाएं ना, जहाँ पहले पैसों का हिसाब करती थी तो केवल लेन देन नकदी कहिया करती थी, लेकिन
1: बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल
0: मोबाइल के थ्रू करने लग गई है।
1: हाँ, कुल
0: तो
1: मिलाकर जो है कहना चाहिए कि जमाना जो है डिजिटल हो चला है। कहते हैं ना 21वीं सदी का भारत चल रहा है,
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी सिर्फ शहरी महिलाओं की ही बात नहीं करेंगे हम पुष्पा, बल्कि गांव की जो महिलाएं हैं वो भी जो है कहते हैं ना डिजिटल उसके साथ में बढ़ती चली जा रही हैं आगे आगे।
0: बिल्कुल सही कहा
1: मतलब मैंने
0: प्रीति।
1: शुरू में तो देखा था कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल होता था, लेकिन अब एक महिला जो है वो दूसरी महिला की हेल्प भी करती हैं। कई जगह मैंने देखा कि ऐसे नहीं आपको ऐसे पेमेंट देना है या ऐसे पेमेंट लेना है। तो आज हम जो है किस तरह से महिलाएं आगे जा रही हैं वही बात करने वाले हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि
1: हाँ
0: अभी हमारा यही विषय है कि डिजिटल भुगतान करने में महिलाएं अग्रणी हो गई है। हम
1: हाँ
0: देखते हैं कि एक सब्जी वाली होती है ना, उसके पास
1: हाँ
0: में भी देखिए पड़ा हुआ होगा कि आप भाई मोबाइल के थ्रू आप भुगतान कर दीजिए।
1: हाँ
0: क्योंकि क्या कहते हैं, मोबाइल हाथ में आया है, भुगतान का नया दौर लाया है। न नकदी की अब चिंता है, डिजिटल भारत की यही क्षमता है। जी
1: बिल्कुल
0: हाँ, डिजिटल भुगतान केवल सुविधा का साधन नहीं बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम भी बन गया है। प्रीति, हम देख रहे हैं कि जब महिलाएं डिजिटल तकनीकों को अपनाती है ना, तो न केवल स्वयं आगे बढ़ती है बल्कि अपने परिवार और अपने समाज को भी प्रगति की ओर दिशा में ले जाती है। हम देख रहे हैं कि भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इस परिवर्तन में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती ही जा रही है।
1: बिल्कुल सही है। आज जहाँ महिलाएं हर एक क्षेत्र में जो है अपना कहते हैं ना मुकाम दिखा रही है कि मैं कितना आगे जा चुकी हूँ, तो बिल्कुल डिजिटल भुगतान के अंदर भी महिलाएं जो है काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। और हमारे देश में कहते हैं ना ग्रामीण और शहरी महिलाएं जो स्मार्टफोन तो रखती ही हैं, साथ ही साथ QR कोड के ऊपर डिजिटल वॉलेट का भी यूज़ करने लगी है। इसके जरिए जो है कहना चाहिए कि एक आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी जाए वो जाती हैं तो उनको अपने साथ पैसा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथ अगर वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर भी एक नई इबारत लिखती चली जा रही है
0: बिल्कुल सही
1: डिजिटल
0: कहा।
1: भुगतान के अंदर जो है, उसकी वजह से भारत के अंदर भी जो है एक क्रांतिकारी सा बदलाव आ रहा है। महिलाएं न केवल डिजिटल लेन देन कर रही है बल्कि उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता की नई मिसालें कायम करके इसको बढ़ावा भी दे रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं संभाल रही बल्कि मोबाइल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट बैंकिंग
1: हाँ
0: और डिजिटल वॉलेट जैसे माध्यमों का उपयोग करके आर्थिक लेन देन को आसान बना रही है।
1: सही
0: गांवों
1: बात
0: से
1: है
0: लेकर शहरों तक महिलाएं किराना क्या सामान खरीदने, बिजली बिल, पानी का बिल भरने या मोबाइल रिचार्ज कराने, ऑनलाइन खरीदारी करने या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने में भी डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही है।
1: बिल्कुल सही है
0: इससे समय की बचत होती है,
1: हाँ
0: नकदी रखने का जोखिम कम होता है
1: सही है
0: और लेन देन में अधिक पारदर्शिता बनी हुई रहती है। महिला स्वयं सहायता समूह ने भी डिजिटल भुगतान को अपना कर आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल बैंकिंग ने महिलाओं को सीधे अपने बैंक खाते और बचत का प्रबंधन करने की शक्ति दी है। अब वे घर बैठे सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी ले रही हैं और वेतन भी प्राप्त कर रही है।
0: बिल्कुल
1: छोटे व्यवसायों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगर महिलाओं के लिए डिजिटल भुगतान जो है एक वरदान की तरह साबित हुआ है। वे बिना किसी नकद की झंझट के ग्राहकों से सीधे भुगतान स्वीकार कर सकती है और उनके व्यापार का जो है इससे विस्तार हो रहा है। UPI फोर हर पहल के तहत जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग द्वारा महिलाओं के वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए यह एक विशेष अभियान चलाया गया है। इसके तहत जो है महिलाओं में डिजिटल भुगतान का डर दूर करके उन्हें ऑनलाइन लेन देन के लिए प्रशिक्षित और जागरूक किया जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, नहीं तो क्या होता है कि कुछ भी कैसे भी आया लिंक, आपने उस लिंक को दबा दिया और फिर

0: आपसे क्या हुआ कि पैसे आपके खाते में थे वो चले गए, तो ये प्रशिक्षण होना अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ।
0: और खास बात यह है कि डिजिटल भुगतान जब भी आप करें ना, तो साइबर सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: हमें अपना OTP नंबर या पासवर्ड है, अपना UPI पिन या बैंक संबंधी जानकारी किसी के भी पास में हमको साझा नहीं करनी है, किसी के भी साथ हमको साझा नहीं करनी है। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ।
0: और खास बात यह है कि डिजिटल भुगतान जब भी आप करें ना, तो साइबर सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: हमें अपना OTP नंबर या पासवर्ड है, अपना UPI पिन या बैंक संबंधी जानकारी किसी के भी पास में हमको साझा नहीं करनी है, किसी के भी साथ हमको साझा नहीं करनी है। इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप आसानी से अपना भुगतान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है। तो जो महिलाएं हैं वो जो हैं अपने एक डिजिटल मित्र के रूप में बन करके अपनी सखियों की या अपनी सहेलियों की मदद भी कर रही है। तो
0: बिल्कुल
1: डिजिटल लेन देन करते समय जो है, बस जैसा कि आपने बताया है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको मैसेज को डायरेक्ट स्वीकार करना नहीं है, लिंक वगैरह डायरेक्ट ओपन नहीं करने हैं। तो जो हमारे पास में डिजिटल भुगतान की जो एक सुविधा उपलब्ध हुई है, उसका उपयोग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि बचत, ऋण और अन्य वित्तीय कार्य ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की वित्तीय भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़ती ही जा रही है। देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब फिर से हम बात करेंगे प्रीति, लेकिन क्या मनोरंजन करवा दें हमारी सखियों का?
1: बिल्कुल।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
0: ओ
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: हेलो
5: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
6: फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझ

0: फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रीति, अभी हमने बहुत ही खास संदेश सुना है ना, कि कैसे आपने को किसी को भी अपने फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है, किसी को भी अपने नंबर नहीं देने हैं। यानी डिजिटल भुगतान की जहां हम बात कर रहे थे, तो ऐसे संदेश दिए जाते हैं ताकि हमारे श्रोतागण अवेयर हो जाए, जागरूक रहे और कैसे भी ऐसे भुगतान करने में या फ्रॉड के चक्कर में वो नहीं आए। तो इससे संदेश देकर हम हमारे श्रोताओं को हमेशा जागरूक करते रहते हैं और अनेक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी हम जानकारी देते ही रहते हैं। प्रीति, आज क्या खास विशेष दिवस है जो हमारे श्रोताओं के साथ हम बातें साझा करेंगे?
5: बिल्कुल, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या कहना चाहिए कि बहुत जीवन दान देने वाला दिन है ना। तो आज जो है सखियों, हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
5: और विश्व रक्तदाता दिवस जो है हर साल जो है 14 जून को दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में जो है पुष्पा इस दिवस को पहली बार मनाया गया था और आज 193 देशों में इसकी वैश्विक पहुंच है। मतलब प्रत्येक जो 193 दिवस है सभी के अंदर मनाया जा रहा है और विश्व रक्तदाता दिवस को 18वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2005 में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था।
4: बिल्कुल, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है। और इस दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा की गई थी। 14 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह रक्त समूह की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर का जन्मदिन होता है, क्योंकि उन्होंने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व और आवश्यक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रीति, हम देख रहे हैं कि आज भी विज्ञान ऐसा कृत्रिम रक्त नहीं बना पाया है जो मानव रक्त को पूर्ण विकल्प बन सके। यानी रक्त को कुछ भी हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है तो इसकी पूर्ति केवल किसी रक्तदाता द्वारा ही संभव होती है। इसलिए कहा जाता है, रक्तदान है जीवन दान, इससे बचती कई जान, आओ मिलकर शपथ उठाएं, रक्त का दान कर जीवन बचाएं।
5: बिल्कुल सही है सखियों, इसीलिए जो है रक्तदान को महादान के रूप में
4: कहा गया है।
5: सही है, रक्तदान का जो है महत्व अगर देखा जाए तो न केवल आपातकालीन जरूरतमंद लोगों के जीवन को बचाने से है, बल्कि कई अन्य लोग जो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, उन्हें बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। और एक नियमित अंतराल पर अगर सखियों हम लोग रक्तदान करते हैं तो उससे शरीर के अंदर जो है आयरन का स्तर भी संतुलित रहता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा भी कम होता है। और रक्तदान के बाद शरीर का जो है बोन मेरो नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति भी आती है।
4: बिल्कुल, यानी कि ये है कि आप अगर रक्तदान करेंगे तो ये नहीं है कि आपको कमजोरी हो जाएगी। कई बार यही सोच कर क्या है कि रक्तदान नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे तो हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि रक्तदान रक्तदाता होता है वो कितना बड़ा एक कार्य करता है। क्योंकि रक्तदान की आवश्यकता कई परिस्थितियों में पड़ती है। कई बार हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटना हो गई है या घायल हो गए कोई लोग, या बड़े ऑपरेशन होते हैं उसके दौरान, प्रसव के समय महिलाओं को, या थैलेसीमिया, कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो रक्त की जरूरत ऐसे समय में जब रक्तदाताओं का योगदान बहुत ज़्यादा अमूल्य साबित होता है। कई लोगों के मन में रक्तदान के लिए लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जबकि चिकित्सक की दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित होता है। शरीर कुछ ही समय में रक्त शक्ति की कमी को पूरा कर लेता है।
5: बिल्कुल सही है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षित रक्तदान के महत्व और इसकी आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना और स्वैच्छिक मतलब बिना किसी भुगतान के जो है रक्तदान को

0: बढ़ावा देना। और अगर हम बात करते हैं पुष्पा, तो जो है इस वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम जो है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई यह थीम जो है स्वैच्छिक और नियमित रक्तदान के जरिए मानवता की सेवा करने के संदेश के ऊपर जोर देती है।
1: बिल्कुल, यानी स्वैच्छिक रूप से हम आगे आएं, रक्तदान करें, यही इसकी थीम का मुख्य उद्देश्य है। और रक्तदान से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि स्वास्थ्य जांच की आपकी जाती है, यानी रक्तदाता और प्राप्तकर्ता दोनों को सुरक्षित रहे उस

0: देती है। बिल्कुल, यानी स्वैच्छिक रूप से हम आगे आए, रक्तदान करें, यही इसकी थीम का मुख्य उद्देश्य है। और रक्तदान से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि स्वास्थ्य जांच की आपकी जाती है, यानी रक्तदाता और प्राप्तकर्ता दोनों को सुरक्षित रहे उसके लिए एक जांच की जाती है। रक्तदान केवल एक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यह हमें दूसरों के जीवन के प्रति संवेदनशील बनाता है। अगर एक यूनिट रक्त किसी भी मरीज को नया जीवन दान दे सकता है, इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। मानव रक्त मुख्य रूप से चार मुख्य रूपों में विभाजित किया गया है, जिन्हें ए बी ओ ब्लड ग्रुप में सिस्टम में कहा गया है। कुछ बातें हमारे श्रोताओं को हम महत्वपूर्ण बता देते हैं,
1: कुछ चक्सी जो जानकारी है जिसका लोगों को ज्ञान नहीं होता है और लोगों के मन में एक वहम या एक भ्रांति फैली रहती है कि अगर हम ब्लड देंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना ब्लड ले लेंगे, कैसे क्या रहेगा।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो सबसे मुख्य बात जो आती है कि अगर हम सोचते हैं कि यार कितना रक्त निकाल लेंगे, तो मेन चीज आती है क्योंकि रक्तदान करते हुए डोनर के शरीर से केवल एक यूनिट रक्त ही लिया जाता है और एक औसत व्यक्ति के शरीर में हम सोचते ना यार एक यूनिट ले लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है पुष्पा कि एक व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट पानी, 10 यूनिट यानी कि कहना चाहिए कि 5 से 6 लीटर रक्त होता है, उसमें से सिर्फ एक ही यूनिट लिया जाता है। तो डरने जैसी कोई भी बात नहीं है,
0: बिल्कुल
1: बिना किसी डर के आप कर सकते हो। और कई बार जो है केवल एक कार एक्सीडेंट में ही चोटिल व्यक्ति होता है उसको 100 यूनिट रक्त तक की जरूरत पड़ जाती है।
0: हाँ, तो बहुत ज़्यादा यूनिट तो की ब्लड की ज़रूरत पड़ती है ना।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: इसलिए आपको ब्लड डोनेट आप करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है।
1: सही है।
0: और एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। भारत में सिर्फ 7% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जाता है। इसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही है। जैसे कि इमरजेंसी के समय जब किसी नवजात बालक या अन्य को खून की आवश्यकता हो तो उसका ब्लड ग्रुप अगर नहीं भी पता है तब भी जो है उसे ओ नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है।
0: बिल्कुल। और ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफी सरल होती है। रक्तदाता को आमतौर पर इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीजों के सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन की टीम सदस्य आपका ब्लड लेते हैं। यानी ये नहीं कि आप चले गए और आपका ब्लड ले लिया, आपकी भी जांच की जाएगी और उसके बाद ही लिया जाएगा।
1: सही है। साथ ही साथ अगर कभी रक्तदान के बाद में जो है आपको चक्कर आते हैं, पसीना आता है या वजन कम होता है, किसी भी अन्य प्रकार की अगर समस्या लंबे समय तक रही है तो आपको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। और एक मुख्य चीज जो आती है यहाँ पर पुष्पा, कि पुरुष जो है वो 3 महीने के बाद में है ना, और महिलाएं जो है 4 महीने के अंतराल पे नियमित रक्तदान कर सकती है। यानी महिलाएं जो 1 साल में 3 बार ब्लड डोनेट कर सकती हैं
0: है। बिल्कुल।
1: और पुरुष 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं और 1 बार ब्लड डोनेट से जो है वो 3 लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत ही मतलब अच्छी चीजें। और साथ ही साथ हर कोई व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता, जैसा कि हमने बताया था। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं है तो ही आप रक्तदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। रक्तदान से सुरक्षित प्रक्रिया है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए कहते हैं रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आपकी एक छोटी सी पहल किसी के लिए नई उम्मीद बन सकती है। रक्तदान केवल रक्त देने का कार्य नहीं बल्कि आशा, करुणा, मानवता का संदेश है। यह वह उपहार है जो किसी अनजान व्यक्ति के जीवन को दूसरा अवसर दे सकती है।
1: रक्त की हर बूंद अमूल्य है, जीवन का यह अनमोल दान है। जो रक्तदान का संकल्प लेता है वो मानवता का सम्मान करता है।
0: बिल्कुल। विश्व रक्तदाता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में नई उम्मीदें, नई सांसें ला सकता है। फिर से हम कार्यक्रम को गति देंगे और हम अगले विषय पर हमारे चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा नगमा हम सुना देते हैं।

0: बिल्कुल, देखो गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो आप है ना घर पर केसर पिस्ता श्रीखंड बनाइए। यह एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है जो गाढ़े दही, केसर, चीनी और पिस्ता से बनाई जाती है। इसे खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए कार्यक्रम तो हमारा बहुत ही लंबा होता है, हमारी इच्छा होती है कि हम और भी रोचक जानकारियाँ देते रहें, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम हमारे कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। बस यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए, हंसी इस प्रकार की रखिए कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो। फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ में आज के महिला जगत कार्यक्रम में। मैं थी आपकी रेडियो सखी पुष्पा व्यास और
1: प्रीति भटनागर।
0: स्वीकार करें हमारा
1: प्यार भरा
0: नमस्कार।

मैडम मैं 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी आपने सुना महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। दोपहर 1:45 हो चुके हैं और समय है फिल्म संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के इस सेगमेंट में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस ट्रैक में हम लाए हैं आपके लिए कुछ हिट बॉलीवुड सॉन्ग्स। कार्यक्रम का पहला नगमा आपके लिए फिल्म हम तुम से

तेरी मोहब्बत पहचान है मेरी, तेरी खुशी शान है मेरी, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, बस तू ही जान है मेरी। श्रोताओं, जब किसी का साथ होता है तो हर मुश्किल हर पल आसान लगता है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें हर दिन बहुत मुश्किल लगता है, समय काटना एक सज़ा हो जाती है। इसलिए अपने साथी का साथ न छोड़ें और प्यार को दिल से निभाएं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आतिफ असलम की आवाज़ में।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। दिल की धड़कन बनकर दिल में रहोगे तुम, जब तक सांस है मेरे साथ रहोगे तुम, हर पल घड़ी

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से।

से आप जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बर्फी से, जिसे आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने और इसे कंपोज किया है प्रीतम ने। तो सुनते हैं ये गीत, इसी के साथ संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त और एंजॉय योर ट्रिक।

66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। श्रोताओं, दोपहर 2:10 हो चुके हैं और ये समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा का आज का विषय है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस।

Innovation for Defense Acceleration Excellence योजना की शुरुआत सरकार ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की यह एक पहल है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में रक्षा और एरो स्पेस के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना है तथा स्टार्टअप MSME नव प्रवर्तकों और शैक्षणिक संस्थानों को रक्षा क्षेत्र के लिए नई तकनीक विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता कम करना, स्टार्टअप और नव प्रवर्तकों को अवसर प्रदान करना, भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के अनुसार आधुनिक तकनीक विकसित करना और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मजबूत बनाना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं।

रक्षाबल अपनी तकनीकी समस्याएं और आवश्यकताएं बताते हैं। IDEX इन चुनौतियों के समाधान के लिए स्टार्टअप और नव प्रवर्तकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। चयनित प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है और सफल तकनीकों को रक्षा क्षेत्र में अपनाया जाता है। यही इस योजना की कार्यप्रणाली है।

0: इस योजना से भारत देश के रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ता है, जिससे कि आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है, युवाओं और स्टार्टअप्स को नए विचारों पर काम करने का अवसर मिलता है, नई तकनीकी और उद्योगों के कारण रोजगारों के अवसर बढ़ते हैं, आधुनिक और स्वदेशी तकनीकों से सेना अधिक सक्षम बनती है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है, आयात पर निर्भरता कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना नवाचार, तकनीकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भविष्य में यह भारत को वैश्विक रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। ये तो थी विकास चर्चा के अंतर्गत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना। आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम

0: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति

0: भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा संस्कृति

0: एक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश

0: हाँ, 18 तरीका हूँ। देखो, मेगाबा, खेमाबा, रत्नाबा और मांगीबाई, खेमलीबाई, हंगलाई जो है किसान भाई बहन जो है केणी कार्यक्रम रो टाइम वे गयो कि भाई माने जो भाई बहन आई रहा है तो रेडियो सेट पे तो वे जो है माने वास्ते कई कई जानकारियां लेने आई रहा है। तो जानकारी आज आपा करावा सा भेरा भाई, देखो कि एकीकृत कृषि प्रणाली रे बारे में।
1: बिल्कुल सही बात है सर। देखो, एकीकृत कृषि प्रणाली की खेती रो एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जानी मैंने कि फसल उत्पादन रे लाल ला रहे आप पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसा दूसरा खेती बाड़ी का काम भी कर सको, एक हाथे कर सको। अब देखो, अंडो मुख्य उद्देश्य री बात करा तो कचरा रो पुनर्चक्रण यानी कि एक कचरा रो दूसरा रो संसाधन करने, लागत कम करनो और किसान भाई बना री आय बढ़ानो है।
0: बिल्कुल हाची बात कह रहा हूँ सा। देखो जटे एकीकृत कृषि प्रणाली री बात आवे तो वन्ना कही वे एक बहुत सारा प्रमुख घटक भी आ करे, तो वन्ने बारे में भी अपना जानकारी करावा कि अणी प्रणाली में किसान जो है अपनी जमीन और संसाधनारे अनुसार जतरा भी जो विकल्प है वना ने आपस में जोड़ी सके है। लारे लारे अणी रे महीने फसल उत्पादन री बात आवे तो मुख्य फसला में जिस तरह आपा कही सका अनाज है, दलहन है, तिलहन है, अणीरे लारे लारे मौसमी सब्जियां और फलों की खेती भी जो है अपना किसान भाई बहन जो है वे आसानियों करी सक रहा है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। अंडे लाल लारे देखो कि एक पशुपालन भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन भी अंडे महीने वे, मत्स्य पालन में बात करें तो खेत में बने थका तालाब महीने, मछली पालन भी आप अणी में कर सको, मुर्गी या बतख पालनो, अंडा और मांस रे बातें भी अणी में नहीं आवे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो या जो अन्य जटे आप बात करा तो अणी रे महीने आवे मशरूम उत्पादन, तो अणी में बायोगैस प्लांट है, वर्मी कंपोस्ट है, केचुआ खाद जणी ने आपा केवा अणारो निर्माण जो है वो भी करी सक्रिया है। और लारे लारे किसान भाई जो है कि या जो प्रणाली है कि किस तरह काम करे है तो अन्नो भी आपा वणा ने मूल मंत्र बताई देवा कि या पद्धति रो मूल मंत्र है कि एक तंत्र रो कचरो, दूसरा तंत्र रो संसाधन। तो अणी रे महीने आपा ले सका कि जिस तरह पशुओं रो गोबर मूत्र वगैरह ये है तो खेतारी फसला है सब्जियां रे वास्ते उत्तक जैविक खाद रो काम करिया करे है। फसल रा अवशेष ने जिस तरह आपा केवा कि वो भूसो है, डंटल है, जानवर रे चारा रे रूप में प्रयोग में लायो जावे। लारे लारे तालाब रो पानी है तो मछलियां रे मलू उपजाऊ वे जावे। जण्यू कही वे कि सिंचाई रो जो उपयोग है वने लावा रे महीने फसला री जो बढ़ोतरी है वह भेरा भाई बराबर पर्याप्त मात्रा में वे जावे सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और देखो कही कहानी मैंने आय रे महीने निरंतर भी वे यानी कि आप देखो एक फसल पर निर्भर नहीं रहो। और अंडे लाल अरे किसान भाई बिना साल भर अलग अलग उत्पाद जैन दूध, अंडा, मछली, सब्जियों अच्छी कमाई कर सके। अणी महीने लागत महीने कमी भी आवे, रासायनिक खाद और कीटनाशक व्यवहार पे खर्च बचे। आप देखो के क्योंकि खेत ही जैविक कचरा रो खाद रो इस्तेमाल आप कर सको सर।
0: बिल्कुल सर। और देखो अणी रे महीने आपा केवा कि मिट्टी री उर्वरता रे बारे में तो लगातार जैविक खाद रा उपयोग करी ने किसान भाई लोग जो है जमीन री जमीन ने हाउ तरीकों उपजाऊ क्षमता रे रूप में बनाने वणाई सके है। और अणियों कई एकीकृत कृषि प्रणाली रो महत्व जो है वो भी देखो कि भारत में अधिकांश किसान छोटा और सीमांत है, सीमित भूमियों बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त करवा में पर्यावरण ने नुकसान पहुँचाए वना टिकाऊ कृषि करवारे वास्ते एक प्रणाली अत्यंत लाभकारी है। जणी ने एकीकृत कृषि प्रणाली रे सफल मॉडल अणी रे में आपा साल भर वेवा वाली जत्री भी कमाई है वणी रे तरीका ने समझवार महीने किसान भाई लोग रे वास्ते बेहतरीन समय है। और अणी रूपों जो अगर किसान भाई लोग है और बहना जो है वे खेती ने एक वैज्ञानिक पद्धतियों अगर वननी शुरुआत करेगा तो जईने वणा ने देखो हाउ पैदावार भी वेगा और पैदावार रे लारे लारे यदि हाउ पैदावार वेगा भेरा भाई तो लारे लारे किसान भाई लोग रे उत्पादन में बढ़ोतरी वेगा सा।
1: बिल्कुल सही बात है सर। तो आपा तो सबने यूज कहंगा कि भाई यह पद्धति अपनाओ और लाल लारे खेती बाड़ी लाल लारे दूसरा काम भी करो सा। और
0: हाँ सा।
1: अबे आपको तो एक अच्छो सो रास्ता नहीं लोग की थोड़ा वहाँ सा।
0: हाँ सा।

0: वो किसान भाई लोगा ने कणी रूप में करनो चावे या पछे वणारा पोषक तत्व कसा कसा है या वे कणी तरीके वाणी पे नियंत्रित नियंत्रित पाई सके और लारे लारे लाभ भी पाई सके। तो आपा देखो बात करा कि रासायनिक उर्वरक जो है वणारा सीमित और संतुलित उपयोग कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। अणिरे महीने मृदारी उर्वरता फसल री पैदावार अने बढ़ाव देवे। आवश्यक पोषक तत्व जिस तरह आप कह सका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश सीधा पौधा ने मिलिया करे है और पर्यावरण जटे की जल स्रोत है बना ने नुकसान हो रोज पे रोज वंचायो जाई सके है सा।
1: बिल्कुल सही बात है सा। और अणि मैंने देखो कि पौधा रो त्वरित पोषण भी वे यानी कि सीमित मात्रा में इस्तेमाल करवा पे उर्वरक मैंने मौजूद पोषक तत्व जल्दी अवशोषित करे और अणि फसल री वृद्धि भी तेज हुए और आप देखो कि तात्कालिक पोषक तत्व री कमी भी पूरी हुई जावे सा।
0: देखो सा जटे अणि महीने आप लाभ री बात करी रहे हाँ तो एक लाभ और है जो है उच्च उपज और खाद्य सुरक्षा क्योंकि बढ़ती आबादी री खाद्य मांगा ने पूरा करवारे वास्ते उच्च पैदावार बहुत ज़्यादा जरूरी है। जटे की सीमित उर्वरक रे उपयोग मिट्टी री खोई तकी उपजाऊ क्षमता जो है वने सही समय पे पाछो लई जायो सके सा।
1: बिल्कुल सा। और मिट्टी में प्राकृतिक स्वास्थ्य सुरक्षा की अगर आप बात कराओ तो अत्यधिक उर्वरक रे उपयोग आप देखो कि मिट्टी रो पीएच स्तर बिगड़ जावे और आप देखो सूक्ष्म जीवाणु भी बहुत सारे नुकसान हुए और रासायनिक उर्वरक का सीमित इस्तेमाल करने आप देखो जैविक खाद यानी कि कंपोस्ट गोबर या जो अंडो मिलाव है किदो जावे मिट्टी री संरचना और जल धारण के कारण क्षमता बहुत अच्छी हुई जावे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जल और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण री बात करा तो अनुचित रूप ज़्यादा मात्रा में डालिया तका उर्वरक भूजल में रिसी जावे है और जल प्रदूषण जो आप कहवा कि न्यूट्रोफिकेशन रो कारण बनी जावे तो सीमित मात्रा में उपयोग करो ये खतरनाक रसायन जो है पानी और पर्यावरण में नहीं घुलेगा सा।
1: बिल्कुल सा। तो आप तो एक ही बात कहंगा कि देखो रासायनिक उर्वरक का दुष्प्रभाव बचवा रहे बात है खेती बाड़ी में जैविक उर्वरक रो इस्तेमाल ज़्यादा करो रासायनिक उर्वरक का संतुलन रो अपना नो बढ़िया मान्य गयो है। आप देखो कि जैविक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक रो अगर आप मिलियो जुलियो अगर काम करोगा तो आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी होगा। अंडे अलावा कहीं कि खेत में मिट्टी की टेम टेम रहता था जाँच भी करानी और आवश्यकता अनुसार विशिष्ट पोषक तत्व रो उपयोग करनो है सा।
0: बिल्कुल सा। तो अणि तरीकों जो है किसान भाई लोग अपनी फसल रा प्रकार मिट्टी री खेती करनी है तो खेत री मिट्टी रे महीने जानवरों समय ये तो अणि तरीकों जो उर्वरक रो इस्तेमाल करेगा तो जैन जो वनारी है जो हाउ तरीकों खेती जो है बढ़िया वही सकेगा और वनारी जो मिट्टी है खेती री वह भी उपजाऊ बनेगा सा। तो देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी रे लारे लारे आपके वो तो मेरा भाई ले चलना गीत गुंजन री दुनिया में और किसान भाई लोगा ने हुने दा एक और राजस्थानी गीत।
1: बिल्कुल सा।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो भेरा भाई
3: जी सा,
2: देखो सा कतरो प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है अपना किसान भाई बहना ने आपा हुणायो सा, और देखो सा अपना रो मनोरंजन करायो, और लारे लारे आपा भी अणी संगीत रो जो है खूब सारो आनंद लीधो सा। अभी देखो कार्यक्रम नी घड़ी ने आगे बढ़ाता तका जानकारी किसान भाई लोगों ने अबे आपा या करावा कि रासायनिक जो उर्वरक है वणारो सीमित और संतुलित उपयोग जो है

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो बेरा भाई
3: जी सा
2: देखो सा और बहुत प्यारो सा राजस्थानी गीत होना है और लारे लारे घनहारा संदेश भी होना है सा
3: जी।
2: और देखो सा अबे बातचीत करा कि देखो अब टेम जो है घणो हारो तावड़ो गर्मी घनी पड़ी रही है तो असी गर्मी रा समय रे महीने आपा किसान भाई लोगा ने या सलाह देवा कि देखो आप लोग अतरी बढ़ती गर्मी महीने ने लू रा चपेट महीने आवो वंचवारी कोशिश कर जो, खूब सावधानी राख जो और लारे लारे जो पशु जो है वनारो भी ध्यान राख जो। तो अणी बारे में आपा बातचीत करा सा।
3: बिल्कुल सर, आप तो यूज कहूँगा गर्मी में देखो ज़्यादा कहीं काम नहीं हुए तो तावड़ा में नहीं निकलनो, वरना आज भी फिर भी निकलनो पड़े तो आपने पानी अच्छो पीणो, खाणो वाणो खाई ना आप निकलो, कपड़ा लंबी आसीन रहा पहन ने निकलो और लारे लारे कही वे ORS गोल ना ऐसा नींबू ना ऐसी चीज़ें रखो ताकि कहीं भगवान नहीं करे चीज घबरे जा तो वहीं टाइम आप वहीं चीज़ ने उपयोग में ले सको। विशेष रूप छोटा बच्चा और बुजुर्गों भी आपने ध्यान रखना।

0: क्योंकि 11-12 बजे हम लगे 4 बजे तक रहो शो तो आवड़ो के आप देखो कि जो हालत खराब कर दे वैसा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहे हो सा कि अणी तपती गर्मी में अगर आपा थोड़ा सा भी पैदल अगर परा गया वन्ना पानी पी दे एक वन्ना छाता हूँ
0: जी
1: तो थोड़ा सा आगे जाइन देखो चक्कर खाइन पड़नो बीपी लो वेणी अणी तरीका री आपने गंभीर बीमारी अरे शिकायत वही सके। तो कुल मिलाइन यो इच कहणो है कि देखो जो किसान भाई लोग है तो देखो वे तो खेता में काम भी करे है वैसा बाड़ी अबार देखो कि गाँव में ने सब जगह केरिया घनी आई है तो घना हारा किसान भाई लोग तो आंबा भी उतार रहा वेगा ये तो ऐसी स्थिति में वड़ा नहीं यूज कहवा कि देखो को वेगा मोड़ा वे जनी हिसाब उठाने समय देखिन पचे काम करनो लारे लारे पानी री बोतल राखनी खावा पीवारो साधन राखनो और एक गमछो आलो करीन आपने माता पे भी नाखिन राखनो तो अणी तरीकों सावधानी राखनी और वेती कोशिश ज़्यादा यू वे तो ही सापने तावड़ा में निकलनो बाकी आपने सुबह और शाम निकलनो है सा।
0: बिल्कुल सा। और अबे आपको तो एक अच्छो सा रास्ता नहीं लोगी तो और होने दें सा
1: हाँ सा

0: तो देखो सा अच्छो सो राजस्थानी लोकगीत होना है आपा। और देखो कार्यक्रम में और भी इच्छा है कि आप अच्छी अच्छी जानकारी दा, लेकिन घड़ी तरफ नाला तो कार्यक्रम में टाइम वेरो विदाई लेवा रो। तो
1: हाँ
0: चला
1: सा,
0: सा
1: हाँ सा,
0: राम राम सा।
1: राम राम सा।

0: मेरे मेरे 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को

0: सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, दोपहर 3 बज चुके हैं, 3:05 हो चुके हैं। हमारी दोपहर सभा के प्रसारणों को यहीं देते हैं विराम। सायं 5 बजे सायंकालीन प्रसारणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

66.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। हमारी संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम अब हमारे FM लेक सिटी चैनल के श्रोता भी एक साथ सुन सकेंगे।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं मानस।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होने वाला है जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे न्यू गैजेट सेगमेंट से, जिसमें जानेंगे फोरेंसिक लैब में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे में। सेहतनामा में बात करेंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी जुबिन नौटियाल और प्रीतम चक्रवर्ती की। साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस के महत्व को समझेंगे। सुशांत सिंह राजपूत और शर्वरी वाघ के बारे में भी जानेंगे, और किरण खेर, कुमार मंगलम बिरला और निखत जरीन से जुड़ी रोचक जानकारी भी हम आपको आज देंगे।
0: बिल्कुल, और अंत में आज के दिन का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी खास जानकारी मैं आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ सारा आलम शाह द्वारा।
3: मेरी पहली कविता का शीर्षक है वो इंसान बड़ा महान। रक्त के एक बूंद की कीमत भी तब समझ आती है जब खुद को या किसी अपने को इसकी जरूरत पड़ जाती है। जीवन बचाते दूसरों का करके उनकी परेशानियों का समाधान, वो इंसान बड़ा महान जिसने किया रक्तदान। दूसरों की अंधेरी दुनिया में रोशनी के दीप जलाते हैं। कुछ फरिश्ते मरने के बाद भी अपनी आँखों से दूसरों को दुनिया दिखाते हैं। नेत्रदान की सोच नहीं है आसान, लेकिन ये कदम लाता है समाज में बड़ा बदलाव। वो इंसान बड़ा महान जिसने किया नेत्रदान। ज़रूरतमंद के लिए कम नहीं है ये वरदान, अगर कोई उनके लिए कर जाए अंगदान। ये न केवल देता है एक व्यक्ति को जीवन दान, लेकिन लाता है पूरे परिवार के चेहरे पर फिर से नई मुस्कान। वो इंसान बड़ा महान जिसने किया अंगदान। वो इंसान बड़ा महान जिसने किया रक्तदान। मेरी अगली कविता है खूबसूरती पर। खूबसूरती आखिर क्या है? चेहरे का रंग है या जुल्फों का ढंग है? आँखों की चमक है या गजरे की महक है? दिलों का एहसास है या कोई मीठी आवाज़ है या लफ्ज़ों का अंदाज़े बयां है? खूबसूरती आखिर क्या है? नैनों का काजल है या साड़ी का आंचल है? क्या ये अच्छाई का बर्ताव है या सच्चाई का भाव है? इंसानी फितरत है या खुदा की कुदरत है या पलकों की हया है? खूबसूरती आखिर क्या है? खूबसूरती आखिर क्या है? मेरी अगली कविता है दोस्ती पर। दोस्ती एक अनोखा एहसास, ऐसा इंसान जो पराया होकर भी रहता हमारे दिल के पास। शरारतें करने में जो हमेशा देता आपका साथ। सच्ची दोस्ती का महत्व जीवन में होता है बहुत खास। वो दोस्त ही क्या जो बातें करने पर अलग ना बिठाए जाए? वो दोस्त ही क्या जो आपके हिस्से का टिफिन ना खाए? वो दोस्त ही क्या जो एग्ज़ाम के एक घंटे पहले आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ाए? वो दोस्त ही क्या जो आपके लिए दूसरों से पेन ना मांग कर लाए? वो दोस्त ही क्या जो बिन कहे आपके मन की बात ना समझ जाए? वो दोस्त ही क्या जो अजीबोगरीब बातें करके आपको ना हंसाए? साथ में की गई हर एक नादानियाँ, होमवर्क की बातें हो या भूत की कहानियाँ, इनके बिना तो हमारी यादें भी अधूरी हैं। सभी के जीवन में एक दोस्त होना तो बेहद ज़रूरी है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है काश तुम। काश तुम बिन कहे

बिन बताए मेरी बात समझ लो। मैं कोशिश करूँ छुपाने की जो तुम मेरी आवाज़ पढ़ लो। सिर्फ औरों के लिए हो मेरी झूठी मुस्कान, तुम मेरा नकाब पढ़ लो। काश तुम बिन कहे बिन बताए मेरे जज्बात पढ़ लो। काश तुम बिन कहे बिन बताए मेरे जज्बात पढ़ लो। मेरी अगली कविता है कुछ लम्हे, जो कि मैंने लिखी है इंट्रोवर्ट्स के लिए। कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ, कोई कागज़ बस अपने पास चाहती हूँ। किसी कविता में डूबना चाहती हूँ, कोई धुन अकेले सुनना चाहती हूँ। मैं नहीं किसी से खफा, ना ही हूँ नाराज़, बस कुछ वक्त चाहिए अपने लिए, जहाँ हो बस मैं और मेरे अल्फाज। दिन के शोर शराबे के बाद खामोशी सी एक रात चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि हर अकेलेपन की कोई वजह हो, किसे पता लोगों से दूर संडे की उस लंबी मीठी नींद में भी कोई मज़ा हो। दोस्तों के साथ बाहर घूमने में माना कि जुनून है, मगर कभी कभी घर पर रहकर शांति से कुछ लिखने में भी अलग सा सुकून है। पूरे हफ्ते की लंबी भाग दौड़ के बाद खामोशी का एहसास चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। किसी किताब की कहानी को आजमाना चाहती हूँ, कुछ लफ्ज़ अपने भी पन्नों पर उतारना चाहती हूँ। बारिश की उन बूंदों का नज़ारा चाहती हूँ, ख्यालों में डूबने का बहाना चाहती हूँ। अपने आसपास चिड़िया की मीठी आवाज़ चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। मेरी अगली कविता है राही और मंजिल के बीच हो रही वार्तालाप के ऊपर। बदलती राहों से ये मन अक्सर घबराता है, न जाने अगले मुड़ाव पर क्या मिले, इस ख्याल से ही डर जाता है। राही चाहे आगे बढ़ना, लेकिन अंधेरों से कतराता है, अनहोनी का डर तो अक्सर उसे सताता है। अनजाने रास्तों से तंग आकर जब राही बैठ जाता है, तब मंजिल कहती राही से, तू कदम तो बढ़ा, राहें अपने आप नजर आएंगी, तेरी उम्मीदों की चमक से अंधेरी गलियां भी रोशन हो जाएंगी। शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, तेरी हिम्मत को देख एक दिन ये भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। राही फिर थोड़ा घबराया, मगर कर हौसले को बुलंद, इस बार कदम उठाया। इन कठिन रास्तों के हर मोड़ पर उसने एक नई चुनौती पाई, बेजान सी ये राहें और गहरी तन्हाई। धुंधली सी जब उसको तकदीर नजर आई, मंजिल ने राही को एक बार फिर आवाज़ लगाई, चलते चलते तुम ओ राही फिर ना रुक जाना, अभी तो है सफ़र बाकी तुमको मुझ तक है आना। हर मुश्किल होगी सरल जो तेरी हिम्मत बरकरार है, यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। राही फिर मंजिल की ओर चला, से तंग आकर जब राही बैठ जाता है, तब मंजिल कहती राही से, तू कदम तो बढ़ा, राहें अपने आप नजर आएंगी, तेरी उम्मीदों की चमक से अंधेरी गलियां भी रोशन हो जाएंगी। शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, तेरी हिम्मत को देख एक दिन ये भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। राही फिर थोड़ा घबराया, मगर कर हौसले को बुलंद, इस बार कदम उठाया। इन कठिन रास्तों के हर मोड़ पर उसने एक नई चुनौती पाई, बेजान सी ये राहें और गहरी तन्हाई। धुंधली सी जब उसको तकदीर नजर आई, मंजिल ने राही को एक बार फिर आवाज़ लगाई, चलते चलते तुम ओ राही फिर ना रुक जाना, अभी तो है सफ़र बाकी तुमको मुझ तक है आना। हर मुश्किल होगी सरल जो तेरी हिम्मत बरकरार है, यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। राही फिर मंजिल की ओर चला,

0: मक्कारवादे, वैसे तो तू बड़े आराम से इंस्टा की रील्स में मन लगाता है और जरूरत पड़ते ही अफरा तफरी में मेरे पन्ने पलटाता है। मैं कितनी मोटी हूँ, भारी हूँ, ये बात अपने हर दोस्त को बतलाता है। मैं कितनी बोरिंग हूँ, बेकार हूँ, ये ताने मुझे रोज सुनाता है। अब क्यों आया है मेरे पास अपनी फरमाइश लेकर? मैं सिर्फ उसे समझ आती हूँ जो मुझ पर ध्यान लगाता है। तू चाहे लाख पन्ने पलटा ले, मैं सिर्फ उसी को याद रहूंगी जो मुझे सच में चाहता है। क्यों, जानकर हैरानी हुई कि किताबों के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं? तभी तो हमारा दिया हुआ ज्ञान सबके पल्ले नहीं पड़ पाता है। वो कहते हैं ना कि असली हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही पहचानता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गलती या गुनाह। अगर कोई करता तुमसे ये सवाल, तो आखिर क्या होते तुम्हारे जवाब? बात कोई अधूरी सुनकर उस पर ना कोई विचार किया, बिन सबूत बिन गवाह के ही किसी को मुजरिम करार किया। गलती या गुनाह किया, कोई वादा करके फिर इनकार किया, उल्टा उस शख्स के झूठे होने पर इकरार किया। गलती या गुनाह किया, अपने मजाक के लिए किसी और का जीना हराम किया, मजाक मजाक में उस इंसान का चरित्र भी खराब किया। गलती या गुनाह किया, जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, पैसों की लालच में दोस्त से ही दगा किया। गलती या गुनाह किया, किसी तीसरे के भड़काने पर अपना संबंध तोड़ दिया, सफाई देने का ना सामने वाले को मौका दिया। गलती या गुनाह किया, किसी की छोटी गलती पर भी इस हद तक खुद से दूर किया, मुश्किल में भी उसे अकेलेपन से मजबूर किया। गलती या गुनाह किया, किसी अफवाह को बढ़ा चढ़ाकर फैला दिया, सच ना पता होने पर भी किसी की सूरत को झूठ से मैला किया। गलती या गुनाह किया, किसी इंसान को अपना कहकर कभी उसका साथ ना दिया, मुश्किलों से संभलने को कभी अपना हाथ ना दिया। गलती या गुनाह किया, दोषी का पता होने पर भी सच से खुद को अनदेखा किया, सब कुछ सोच समझ कर भी अनजान होने का नाटक किया। गलती या गुनाह किया, गलती या गुनाह किया। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ सारा आलम शाह द्वारा।
2: बिल्कुल। और दोस्तों, किसी भी अपराध का रहस्य सुलझाने में सिर्फ पुलिस की जांच ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक भी अहम भूमिका निभाती है। जब चोरी, हत्या या साइबर अपराध जैसे मामले जो है वो सामने आते हैं, तो जांच की अहम कड़ियाँ सिर्फ फॉरेंसिक लैब तक पहुँचाई जाती है।
1: बिल्कुल मोहित, जो फॉरेंसिक लैब है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे सबूतों की जांच की जाती है जो अक्सर सामान्य नज़रों से नहीं दिखाई देते।
2: तो आइए आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में जानते हैं फॉरेंसिक लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के बारे में जो अपराध के रहस्य सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल मोहित, आज की जो फॉरेंसिक लैब है इसमें जो डीएनए एनालाइजर जैसे एडवांस उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी मदद से खून, बाल और अन्य जो जैविक नमूने होते हैं इनकी जाँच करके व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। कई बार वर्षों पुराने जो मामले होते हैं इनकी भी इसी तकनीक की मदद से सुलझाया जाता है।
2: बिल्कुल। और इसके अलावा 3D क्राइम सीन स्कैनर भी जांच एजेंसियों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होता है। यह घटना स्थल का एक डिटेल मॉडल तैयार करता है जिससे जांच अधिकारी बाद में जो है पूरे घटना स्थल का बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं।
1: और साइबर अपराधों की जो बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। इनकी मदद से जो मोबाइल और कंप्यूटर से डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया जा सकता है जो जाँच में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत बनते हैं।
2: साथ ही फिंगरप्रिंट जांच के लिए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कुछ ही समय में लाखों रिकॉर्ड से मिलान कर संभावित व्यक्ति की पहचान करने में काफ़ी मदद करता है।
1: इसके साथ ही यूवी और इंफ्रारेड कैमरे का भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी सहायता से ऐसे निशान और सबूत खोजे जा सकते हैं जो कि सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते।
2: यानी आधुनिक फॉरेंसिक लैब्स में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक गैजेट्स अपराधों की जाँच को अधिक तेज, सटीक और वैज्ञानिक बना रहे हैं।
1: सही कहा मोहित, तकनीक की मदद से आज जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहले से कहीं ज़्यादा तेजी और विश्वसनीयता के साथ पहुंचती जा रही है। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा न्यू गैजेट्स का सेगमेंट फॉर फॉरेंसिक लैब्स।

0: दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो जन्म से ही व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है और धीरे धीरे उसके शरीर को प्रभावित भी करती है।
1: बिल्कुल मोहित, और आज के सेहतनामा में भी हम ऐसी एक दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। वो है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि DMD, जो शरीर के जो डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यह प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है।
0: बिल्कुल, और इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 2 से 5 साल की उम्र के बीच दिखाई देने लगते हैं। बच्चों को चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने या जमीन से उठने में कठिनाई हो सकती है। कई बार बच्चे सामान्य उम्र की तुलना में देरी से चलना शुरू करते हैं।

0: हड्डी से प्रभावित बच्चों में बार बार गिरना, पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही दिखाई देती है, और जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। ये इसके आम लक्षण हो सकते हैं, और समय के साथ अगर ये कमज़ोर और शरीर की जो अन्य मांसपेशियों को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल, और विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी मुख्य रूप से लड़कों में अधिक देखने को मिलती है। इसकी पहचान के लिए ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट जैसे परीक्षण किए जाते हैं, जिससे बीमारी का समय पर पता चल सकता है।
0: हालांकि वर्तमान में इसका पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और दवाओं से, जो फिजियोथेरेपी है, नियमित व्यायाम है और उचित देखभाल से इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और आज चिकित्सा विज्ञान में लगातार रिसर्च हो रही है और नई उपचार पद्धतियों पर काम भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में DMD से बेहतर इलाज की उम्मीद बढ़ रही है।
0: यदि किसी बच्चे में मांसपेशियों की जो असामान्य कमजोरी या और बार बार बार गिरना या फिर विकास में देरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो फिर विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। समय पर जांच और सही मार्गदर्शन बेहतर देखभाल और आधार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेहतनामे में बस इतना ही।

0: दोस्तों, बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपनी आवाज़ और धुनों से करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। एक है मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और दूसरे हैं जाने माने संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती।
1: बिल्कुल मोहित, एक तरफ जुबिन नौटियाल अपने दिल को छू लेने वाली गायकी के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी ओर प्रीतम चक्रवर्ती ने बॉलीवुड को अनगिनत सुपरहिट गाने देकर और यादगार संगीत दिया है। साथ ही आज ही के दिन इन दोनों का जन्मदिन भी है।
0: बिल्कुल मानस, शुरुआत करते हैं जुबिन नौटियाल से। उनका जन्म 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और गिटार, पियानो, हारमोनियम व ड्रम जैसे कई वाद्य यंत्र बजाने में भी महारत हासिल की। साल 2014 में फिल्म सोनाली केबल के गीत एक मुलाकात से उन्हें बॉलीवुड में कदम रखा।
1: इसके बाद जुबिन ने तुम ही आना, तुझे कितना चाहें और हम राता लंबिया जंबिया लुट गए, मोनिका और बरसात की धुन जैसे कई लोकप्रिय गीत गाए। उनकी मधुर आवाज़ और भावपूर्ण अंदाज ने उन्हें देश के सबसे पसंदीदा गायकों में शामिल किया।
0: बिल्कुल, और अवार्ड्स की बात करें तो जुबिन को राता लंबिया के लिए 2022 में आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का सम्मान भी मिला। इसके अलावा उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और राइजिंग म्यूजिकल स्टार अवार्ड जैसे कई सम्मान भी प्राप्त हुए।
1: वहीं प्रीतम चक्रवर्ती का जन्म 14 जून को 1971 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने विज्ञापनों और टीवी कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार करके की। फिल्म धूम का जो संगीत था वो उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।
0: इसके बाद प्रीतम ने जब वी मेट, लाइफ इन अ मेट्रो, लव आजकल, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, ए दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र और डंकी जैसी फिल्मों में शानदार संगीत दिया। उनकी धुनों में भारतीय और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
1: उपलब्धियों की बात करें तो प्रीतम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर अवार्ड और 5 आईफा अवार्ड के साथ में कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने जैम 8 नामक म्यूजिक प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की जो नए कलाकारों को अवसर प्रदान करता है।
0: तो दोस्तों, अपनी आवाज़ से जादू बिखेरने वाले जुबिन नौटियाल और अपनी धुन से संगीत को नई पहचान देने वाले प्रीतम चक्रवर्ती को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विशेष दिवस की जो इंसानियत सेवा और जीवन बचाने के संदेश को समर्पित है। दोस्तों, हर साल 14 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मोहित, यह दिन उन लाखों स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाताओं को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करके अनगिनत लाखों की लोगों की जान बचाते हैं और दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव, कैंसर उपचार और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्त जो है वो जीवन दायिनी का रूप की भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा की गई थी। और आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज कर मेडिकल साइंस को महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, साथ ही रक्तदाताओं के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना भी है। साथ ही यह संदेश देना भी है कि नियमित रक्तदान से अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती है।
0: और इस साल के अभियान का उद्देश्य नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्त एवं प्लाज्मा दान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, रक्तदाताओं के योगदान को सम्मान देना तथा सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों और मजबूती बनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: साथ ही इस साल के थीम की अगर बात करें तो वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें और जीवन बचाएं। यह थीम हमें याद दिलाती है कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: और रक्तदान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में चाहे कितनी भी प्रकृति हो जाए, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता आज भी पूरी तरह मानव दान पर ही निर्भर करती है।
1: इसलिए दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं और ब्लड डोनेशन करने के योग्य हैं तो समय समय पर ब्लड डोनेशन करें और आप किसी ज़रूरतमंद के जो जीवन की आशा की नई किरण भी बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है।
0: तो आइए इस विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्लड डोनेशन के महत्व को समझें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और मानवता की इस अनमोल सेवा में अपनी भागीदारी निभाएं।

0: उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला।
1: बिल्कुल, और सुशांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि वे विज्ञान, अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। वे अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते थे और उनके पास एक आधुनिक टेलीस्कोप भी था। 14 जून 2020 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में और उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
0: अब बात करते हैं शर्वरी बाग की। तो 14 जून 1997 को जन्मी शर्वरी बाग ने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की। उन्होंने द फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए वेब सीरीज से अभिनय की शुरुआत की और बंटी और बबली 2 से बॉलीवुड में कदम रखा।
1: शर्वरी को उनकी पहली फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू और IIFA स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 2024 में रिलीज़ हुई मुंजिया के लिए उन्हें नई पहचान जो है वो मिली। वे युवा पीढ़ी की ये चर्चित अभिनेत्रियों में भी शामिल हैं।
0: एक और सुशांत सिंह राजपूत की प्रेरणादायक यात्रा है और शानदार उपलब्धियाँ, तो दूसरी ओर शर्वरी बाग को तेजी से आगे बढ़ते फिल्मी सफर दोनों ही हमें मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर विश्वास रखने का संदेश देते हैं। तो इसी के साथ हम शर्वरी बाग को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकारों की जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
4: एक और हम याद कर रहे हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वहीं दूसरी ओर जन्मदिन है युवा अभिनेत्री शर्वरी बाग का।
3: बिल्कुल मानस, सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता से की, फिर बॉलीवुड में कई पहुँच है, PK, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे और दिल बेचारा जैसी यादगार फिल्मों में अभिनय भी किया।
4: सुशांत को उनके शानदार अभिनय के लिए कई सम्मान मिले। टीवी जगत में उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जैसे पुरस्कार मिले। वहीं फिल्म काई पोछे के लिए

0: दोस्तों बात करेंगे तीन ऐसी हस्तियों की जिनका जन्मदिन है। दोस्तों एक है प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व सांसद किरण खेर, दूसरे हैं देश के जाने माने उद्योगपति कुमार मंगल बिरला और तीसरी हैं विश्व विजेता भारतीय मुक्केबाज निकहत झरीन।
1: बिल्कुल मोहित, इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर देश का नाम है जो है रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं किरण खेर की, तो 14 जून 1952 को जन्मी किरण खेर हिंदी और पंजाबी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने सरदारी बेगम, बोरीवाली देवदास, रंग दे बसंती, मैं हूं ना, वीर जारा और दोस्ताना जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया है।
0: बिल्कुल, और अभिनय के साथ साथ वे राजनीति में भी सक्रिय रही और 2014 से 2024 तक चंडीगढ़ के लोकसभा सांसद भी रही। उन्होंने सरदारी बेगम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष ज्यूरी तथा बारीवाली के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए।
1: अब बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला की, तो 14 जून 1967 को जन्मे कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मात्र 28 वर्ष की उम्र में समूह में कमान संभाली और अपने नेतृत्व में दुनिया की जो प्रमुख औद्योगिक समूह में शामिल हो गए।
0: बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में समूह का कारोबार कई गुना बढ़ा और आज यह 40 से अधिक देशों में कार्यरत है। उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनके योगदान के लिए उन्हें 2023 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
1: और अब बात करते हैं भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत झरीन की। 14 जून 1996 को तेलंगाना के निज़ामाबाद में जन्मी निकहत झरीन ने भारतीय बॉक्सिंग को नई पहचान दिलाई। वह लगातार 2 बार महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की चुनिंदा मुक्केबाजों में शामिल है।
0: इसके अलावा उन्होंने 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता। खेल जगत में उत्कृष्ट के योगदान के लिए उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
1: तो दोस्तों किरण खेर, कुमार मंगलम बिरला और निकहत झरीन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर एक विशेष पहचान बनाई। इसी के साथ इन तीनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के दिन के इतिहास का, यानी 14 दिन के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं हुई, आइए जानते हैं।
1: तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साल 1767 की। तो आज ही के दिन अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने राष्ट्रीय ध्वज स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को अपनाया। इसी कारण अमेरिका हर वर्ष 14 जून को फ्लैग डे मनाया जाता है।
0: बात करें साल 1907 की, तो आज ही के दिन नॉर्वे की महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
1: अब बात करें साल 2002 की, तो आज ही के दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक में विकसित मौसम संबंधी उपग्रह METSAT-1 का सफल प्रक्षेपण किया, जिसे बाद में कल्पना वन नाम दिया गया।
0: तो दोस्तों, ये थी 14 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।
1: अब दोस्तों, आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो फिर

0: हमारे जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कल के जो मुकाबला था उसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में रहा, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीता 195 रन बनाकर।
1: तो दोस्तों अब मिलते हैं इसी गीत के साथ, आपसे लेते हैं विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थे
0: मानस व्यास, नमस्कार।

0: उपग्रह MET-SAT-1 का सफल प्रक्षेपण किया, जिसे बाद में कल्पना 1 नाम दिया गया।
1: तो दोस्तों, ये थी 14 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।
0: अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो फिर हमारे जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें कल के जो मुकाबला था उसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में रहा, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीता 195 रन बनाकर।
1: तो दोस्तों, अब मिलते हैं इसी गीत के साथ, आपसे लेते हैं विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थे
0: मानस व्यास। नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37

0: 20वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125,000 से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे दियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म यंगिस्तान से।

छः मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म बर्फी, संगीत प्रीतम का है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।

ये गाना अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से फिल्म संगीत। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत चित्रगुप्त का, गीतकार प्रेम धवन।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:27 होने में कुछ ही पल बाकी हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हम रिले करेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 6:40 पर जिले की चिट्ठी। जिले की चिट्ठी के बाद हम रिले करेंगे 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के तुरंत बाद शाम 7 से हम रिले करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले T20 महिला विश्व कप क्रिकेट मैच का आँखों देखा हाल। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: दोस्तों साथ ही आपको बता दें हमारे AIRA पर फिल्म संगीत का प्रसारण जारी रहेगा।
1: जयपुर अजमेर केंद्र है, शाम के 6:27 हुए हैं और अब से बस थोड़ी देर में पहले शाम 6:30 पर सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर होगी जिले की चिट्ठी, उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा।
2: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारण

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख

0: देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
1: देखो, जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में, प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तार। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी।

है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है, उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

0: सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस

16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंडे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है, इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का

0: सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण मत है आधारित बतायो। केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहा शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगारी समस्यावारों मौका मात है समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज। पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई ठोड़ा मात है आंधी और बारिश। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज नींस माए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरू उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस माए राख्या इन कार्यक्रम माए दूजा देशा रा शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस रा मजबूत संबंधा रो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवाना री आकांक्षावा देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे रही है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भारत रे बारे इन विशेष पहल री मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां सु संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हलका माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रो आजादी रे पछे भारत रा सबू लंबा टेम ताई निर्वाचित प्रधानमंत्री बनवा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेता वारे बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा मात है चर्चा चल रही है जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेड़ो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी माए सरकारी उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार करियो जा रही है। सिरोही जिला मुख्यालय माथे चल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो। इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया। अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई जी प्रदर्शनी रो प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जायजो लीनो। इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शियो नी जावेला। खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रहवेला।
3: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में सब इंस्पेक्टर में आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी।

0: कोई व्यक्ति माना बचा है और कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
1: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा री कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 बरस माए भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक न्याय और जन कल्याण हलका माए घनी तरक्की करी है। वे कया के मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास रा मंत्र रे सागे काम करियो है।
2: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
1: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथे राख्या एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो। इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,072 लोग भाग लेना। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया के उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है। बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बनावारी अरज करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोल कोलकाता माए वेला। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। राज्य सरकार प्रदेश माए राख्या जा रिया ग्रामीण सेवा शिविरा माए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार री पोस्टिंग रो अधिकार दियो है। 12 जून सु सरुविया इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीकाओं करबा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दीनो है। जनता सो जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करबा और योजनावारो फायदो हरेक जना ताई पुगाबा खातर सरकार यो कदम उठायो है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार खेतर माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला। इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है। खातेदारारा जमी सु जुड़िया मामला और अभिलेखा माए गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण सु जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है। तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायतारा सीमा ज्ञान दी शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है। सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है। राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है। नया नियमा रे मुजब अबे नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला। पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिंचला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है उन माए अबे सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे पछे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला। पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पछे नवीनीकरण करवा कोई प्रावधान नहीं हो बासु राज्य की करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नहीं हो जिन वजह सु नमक उत्पादक घना परेशान हा। राज्य सरकार कानियों इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादक ने राहत दी गई है। सरकार इन फैसलाओं नमक हल्का माए निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माए वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माए बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत कया कि राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्कारा ने जैविक और प्राकृतिक खेती री कानियों जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई। जावर माइंसरा सामुदायिक भवन माए राखी जी इन कार्यशाला माए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना। इन मौके कास्कारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करवाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश माए प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर लारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ एक थोड़ा माथे बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य रा पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सागई शेखावाटी खेतरा जिला माए कई थोड़ा माथे आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसो कई थोड़ा माथे

0: हलकों में बरस बासों दिन और रात रात तापमान में गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश और नौ जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। वठीने जैसलमेर अलावा सगड़ा जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वहवासू गर्मियारी छुट्टियां रे चालता प्रदेश श्री सैर सपाटारी थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाड़ला कुछ एक दिनाओं घरेली सैलानिया की तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौड़ आबूराज में आदिना राजस्थान रे साके ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाका सिरोही खबर नबी सो।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप ए रो बकिंगम में एज वेस्टर्न माए भारतीय टीम रे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचा माए भारत हाल ताई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला माए हरा चुकियो है। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज प्रदेश भर में एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व बारा माए जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर बारा लगसू न्यारा न्यारा संगठन और संस्थानारी कानियों कार्यक्रम रखा गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सफाखाना माए सम्मान समारोह राखियो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। भीलवाड़ा माए रेड क्रॉस सोसायटी री कानियों राख्या कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबरां एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर माए जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की समस्या वालों मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: बल्लेबाजों से होगी तो फिलहाल मैं स्वागत करूंगा अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया का।
3: इट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड वी आर ऑल सेट टू कॉल द लाइव एक्शन। द थिंग इज दैट टुडे मस्ट बी अ गुड डे फॉर इंडिया बिकॉज they won the toss and Ashish let me tell our listeners that India had lost 8 consecutive tosses before this match in T20Is and therefore things have started off on the right note. Of course, they say well begun is half done and we are hoping that our openers get us off to a good start. Smriti Mandhana and Shefali Verma out there in the middle and we can spot Pakistan's wicketkeeper Muniba Ali. She is standing up to the stumps which means that she doesn't want the batter to step out and alter the length of the bowler. That is what Pakistan are looking at. In fact, it looks like they're going to start off with a spinner. By the looks of it, it's going to be Sadia Iqbal.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति

0: इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशियन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology.